0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437
3: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
4: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट, इजी एक्सेस नेटवर्क। अल हबीब करंट भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मोरो नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज। GA FM 88 नेटवर्क।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: Tehzeeb o Saqafat se saji. Sindh ki mehman nawaz dharti.
3: Jiski fazaon mein rachi basi hai, ban ke mohabbat ka saaz. GAFM 88 ki awaaz.
2: GAFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़
5: मिसाइल हमला अरब टीवी मौजूद पासदरा ने निकला आप जवाबी कार्रवाई करने इसराइल के उतरे इलाकन के बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन सा निशानों बनायो पासदरा ने निकला चवायत इसराइल लबनान में हिजबुल्लाह खिलाफ कार्रवाई न रो क्यों तो नतीजा तबाह करूंदा इसराइल जब ईरान ते हमला तेहरान तब्रिज आन आए गिर्च में धमाकन जा आवाज बुधा वह इसराइल दावा कही है तो ओला आए सेंट्रल एयर ईरान में फौज हंदन के निशानों बनाए वो है कार्रवाई ईरानी हमले के जवाब में कही वही ईरान जी मिसाइल हमलन सा कें के नुकसान ना पहुंचाया तो सफारतकारी वाली मेहनत जाया थी वने अमरीकी सदर ट्रंप के व्हाइट हाउस में विरोध इसराइल के हमले और ईरान के जवाबी हमलन बाबत ब्रीफिंग सदर ट्रंप चवा ईरान हमला बंद करे नेतन्याहू के चवंदस ईरान खिलाफ जवाबी न करे मुआहदे का आगे न पाबंदियों खत्म थन्दू नई जब्त थियल असासा बहाल थन्दा इसराइली मीडिया मूजिब अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वजीर अजम के फोन करे ईरान हिजबुल्लाह खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान चूंडन में पीपीए मैदान मारे वरतो जियालन जो जशन चौवी सीटन मारना सीटन जो मुकम्मल नतीजा अची पाया गैर सरकारी गैर हतमी नतीजन मूजिब पीपल्स पार्टी नवन सीटन से कामयाब बिन सीटन से नवाज लीग एक वाजिद अल मुसलमीन छह सीटन से आजाद उम्मीदवार कामयाब अजीबे टे गिलगित आजाद उम्मीदवार सैयद सोहेल अब्बास खटे वो पीपल्स पार्टी जो आफ्ताब हैदर बे नंबर से रो जीबीए चार नंगर से पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर कामयाब इस्लामी तहरीक पाकिस्तान जो मोहम्मद अयूब वजीरी वे नंबर से रो जीबीए पंज ते नगर से पीपल्स पार्टी जो जुल्फकार अली मुराद कामयाब मदरसे वादतल मुस्लिमीन जो रियाज अकबर हाराए वो जीबीए सत असगरदू से पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी खटे पाकिस्तान पार्टी जो राजा जलाल हुसैन खान बे नंबर से रो जीबीए असगरदू नव से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद कामयाब आजाद उम्मीदवार वजीर मोहम्मद सलीम हाराए वो गांधी के तक बवी से नवाज लीग जो उम्मीदवार इब्राहिम सनाई ए जीबीए चौवी गांधी तमा आजाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक खटे वो बेन तक नतीजा अचान जो सिलसिलो जारी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के चौवी सीटन से 400 का उम्मीदवार हिस्सो वरतो पीपल्स पार्टी टेवी नवाज लीग बवी सगाम पार्टी या 15 उम्मीदवार के मैदान में लाथो वो 204 आजाद उम्मीदवार पर मुख्तलिफ तकन इलेक्शन में हिस्सों वरतों

0: रहे थे, आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 33 8559।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group per Atmat. Aimba Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nayi motorcycle ji sale. कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर. सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो. कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303 5592120.
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94.

साईं जा यादगिरी याने यादूं ज़िंदगी जो ख़ूबसूरत ऐं अज़ीम सरमायो आहे। यादूं जॾहिं तनहाईअ जे मौसम में ईंदियूं आहिनि त गुज़िरियल ॻाल्हियुनि खे सोचे करे चपनि ते मुर्क पखिड़िजी वेंदी आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त गुज़िरियल ॾींहं जो पल पल सोचे करे दिलि रोई बि पवंदी आहे, ऐं यादूं मायूसीअ में उमेद जो ॿरंदड़ ॾींहुं हूंदियूं आहिनि। ऐं यादूं ताज़नि गुलनि जे मिसाल आहिनि, ऐं यादि जो ॾीओ जॾहिं कंहिंजी यादि में ॿरंदो आहे त दिलि जो बोझ अखियुनि जे ज़रिए निकिरी ईंदो आहे।

जी हा समेन प्रोग्राम रोशन सुबुह में हाणे अवां दोस्तनि जा नाला खणंदासीं पर अवां खे इहो ॿुधाईंदुसि त जेको मां हिन वक़्तु कलाम हलाईंदुसि उहो असांजो जेका असांजी स्टेशन आहे मीरपुर ख़ासि त मीरपुर ख़ासि वारनि जे लाइ मुंहिंजो ही जेको कलाम हूंदो ऐं जेका अक्सरियत आहे नालनि जी हिन वक़्तु उहा मीरपुर ख़ासि वारनि जी आहे जेको ही मुंहिंजो कलाम हूंदो हलाईंदासीं उहो मीरपुर ख़ासि वारनि जे नाले हूंदो ऐं समन कुझु दोस्त जा नाला ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां फ़तेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो ऐं बेबी शुगफ्ता नास कनासरो ऐं क़ुर्बान अली ख़ासकेली इनायत अली ख़ासकेली ऐं क़ुर्बान

जरवार पोड़ो अब्दुल अज़ीज़ सोलंगी पोड़ो सोलंगी मीरपुर खास का चनेसर बेहण आज़ाद बेहण मोरे का आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काने का नवीद चन्ना घोटकी का यास्मीन मलिक मीरपुर खास का तमन ही पंजो कलाम गुलाब जो गुल बुधों था यो मीरपुर खास वारन जे नाव है।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह जारी उसारी आहे, तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं। तव्हांजा नाला ऐं तव्हांजे पसंदि जा ई कलम हूंदा ऐं हिन खां पिया नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ
1: 00 3 2 0 4 3 7 2 0 2 4 2 4 6 0 1 0 0
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: हा जी असां में न वाक़ई वक़्तु बि हाणे थोरो बचियो आहे ऐं कुझु अवां दोस्तनि जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं। नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां भाउ जो मैसेज आहे ऐं बरकत अली जमाली बलोच अली हसन जमाली बलोच ॻोठु हाजी गुलानबी बलोच जमाली बलोच बलोचिस्तान खां मोहम्मद ख़ान कुंभार वफ़ा जमालद्दीन कुंभार अबू बकर कुंभार हाले पुटा स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं लटको मोरी सांगड़ खां ममन सालिह लगारी लाल बख्श लगारी ऐं बिलावल लगारी ऐं हुन नंढो ओसामा लगारी हुन सां गॾु आहे ऐं मोहम्मद मीरण जखरणी जेकबाद खां भाउ जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब ऐं बखर खां रेहाना ख़ान दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं साईं जा ॻोठ मोले ॾिणे माछी लॻे वॾनि महरनि खां ज़मीर हुसैन सोलंकी मुख़्तार अली ज़हीर अब्बास ऐं वफ़ा हुसैन सोलंकी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर ॻोठ हसू जतोइनि खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन
1: अंदर से भी आपने कमरे वगैरह देखे होंगे किस तरह के
0: ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जुणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो ऐं यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद अली महेसर ऐं असांजो इमदाद अली दायो मोहम्मद सैफुल्ला दायो जवाद अली यासिर दायो लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां ऐं भाग्यो खान शर ॻोठु आज़मदीन शर खां राशिद अवाण असांजो प्रोग्राम ॿुधे पियो भाउ मेरापुर खां हाजी सोरा मंगरियो ॻोठु सचिनो मंगरियो खां ऐं हुन सां गॾु आहिनि गुलाब खान मंगरियो ऐं नज़र मोहम्मद मंगरियो ऐं अलाह बचायो नुहाणी भाउ प्रोग्राम ॿुधे पियो शाहपुर नूरपुर खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी लख कुर्ब आख़िरी कलाम जलाल चांडियो अवां दोस्तनि जे नाम।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

के ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग मुझे और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दो सेगमेंट्स में आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाएगा, जिसमें से पहला सेगमेंट होगा सुर लगाओ गाना सुनाओ, और सुर लगाओ गाना सुनाओ में आप एक अदद गाना सुनाएंगे, वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा सेगमेंट होगा वो होगा बोलो तो माने, जो कि अगले घंटे में हम कर रहे होंगे, और अगले घंटे में जब हम कर रहे होंगे सेगमेंट, तो उसमें एक अदर टंग ट्विस्टर होगा जो कि आप कह के दिखाएंगे, ठीक है? तो ये करेंगे हम, गाना सुनेंगे हम,

0: मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303 5592120।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर आई

मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।

0: मीरापुर FM 94 गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
2: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319 1550724
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: जी जी हम आपको गाना सुनाते हैं।
1: सुना दें।
0: दिल आए अड़ी यार सनम, दिल आए अड़ी यार सनम, मके तो जो कसम तुझे तेरे जो कसम, दिल आए अड़ी में तो अमाला देख दे।
1: ओके क्या टाइटल क्या है इस गाने का?
0: रुखसार आबासी को सलाम।
1: इस गाने का नाम क्या है? ओके गाने का नाम क्या है? ओके मैं सर्च करती हूँ और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू। 03000113488 भाई का गाना हम सर्च कर रहे हैं, साथ साथ कॉलर्स भी ले लेंगे। 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, तो कॉल कीजिए। नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हाल चाल?
2: दिल भाई जतई मां के चंदन केटी शाबिलो ताल को दिलो सखरा बाजी रुखसार।
1: ओके मुझे बताइए कि गाना सुनाएंगे?
2: बिल्कुल सुनाएंगे बाजी। परमा बुद्ध है तुम, परमा का बुद्ध है जो साईं।
1: ओके
2: हाँ, ॾिसो यार मुझे जो कुर्बानियूं घर तीअ में तंदड़ा तो करे, कॾहिं वेर सवेर थी वेंदी आहे दर ते बि सॾड़ा थो करे। ॾिसो यार मुझे जो कुर्बानियूं घर तीअ में पंदड़ा थो करे, कॾहिं वेर सवेर थी वेंदी आहे दर तीअ में पंदड़ा थो करे। बाजी कुझु मां सां भार बि आहिनि, हाँ यादि कंदुमि मुंहिंजो भाउ आहे चतई, मुंहिंजो फाटियो आयल चतई, ऐं इश्पाक चतई पापर पापर शेख साहब भाई इश्पाक नादी, ऐं मुंहिंजा अधु चतई बाक़ी जेके ॿुधनि था वकार शे वकार चतई त लाड़कान खां भाई जेके ॿुधनि था वफ़ा अब्दुल वहीद जतई पारां सॼे सत खे सलाम बाजी रुखसार तव्हांखे हे सॼो प्रोग्राम नाले।
1: ओके जी थैंक यू। ये रहा गाना और ये डबल आवाज क्यों आ रही है? अपनी आएगी।

0: जी कॉलर मौजूद है मेरे साथ लाइन पे। थैंक्स। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
0: वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल किशोर, कैसे? ठीक ठाक
1: शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए, सब ठीक है?
0: जी, सब ठीक ठाक है। मुझे बताया, गाना सुनाना है कोई आपने?
1: ऐसे थोड़ी आते हैं।
0: ऐसे थोड़ी ना आते हैं, चले फिर सुना दे।
1: जुदा तू न जाने मैं न जानू, तू न जाने मैं न जानू, तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही गुमान, तुझे तुझसे चुराया धड़कन में बसाया, तू हो न सका मेरा क्यों जाने ना, तू मेरा सुकून है मुझ में, तू है मुझ में तू।
0: ओके, वेरी नाइस। किसी को डेडिकेट करना है, कुछ और कहना है?
1: थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, इस्माइल किशोर, अल्लाह हाफिज। और इस गाने के साथ हम एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे और फिर वापस आएंगे इस्माइल किशोर के गाने के साथ। सोचती हूँ जिंदगी गुलजार है।

0: पाकिस्तान की शान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: का तंत्र ये है कि दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली ठीक है, ये कहना है। दानिया ने धीरे धीरे दाल देगची में डाली और ये कहके दिखाएंगे, और ये कहने के बाद ना जो बंदा सही सही अच्छा अच्छा कहेगा वो विन कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम सरदर, कैसे हो?
1: बिल्कुल
0: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। जल्दी से गाना सुना दो। हाँ जी, जल्दी है। थोड़ा सा लाउडली सरदर्द, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, अब ठीक आ रही है।

0: ओके अच्छा सरदार, मुझे इसका नाम भी बता दो, मुझे गाना समझ नहीं आया. सॉरी दोबारा बताओ.
1: प्यार का वादा
0: ऐसे निभाए. ओके ठीक है, किसी को डेडिकेट करना है? ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखो सरदार, अल्लाह हाफिज. जी लास्ट में हम प्ले कर रहे हैं, मतलब कि न्यूज ब्रेक पे जाने से पहले प्ले कर रहे हैं सरदर्द की रिक्वेस्ट को, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. भरोसा भी, रफ्तार भी. Bank Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.

यान सा मुआहदे जे वेझो आयो नथा नथा चाहियां त मुआहदे खे ख़राब कयो वञे। नेतन्याहू वटि बि ईरान सां डील क़बूलण खां सवाइ ॿियो को बि कस नाहे। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त ईरानी हमलनि अमरीका जी गाॾियुनि वारी ख़्वाहिश खे तब्दील नाहे कयो। तेहरान खे चवां थो त अवां मिज़ाइल फायर करे छॾिया, हाणे बस कयो, गाॾियुनि जी मेज़ ते वापसि अचो। ईरान सां मुआहिदो न थियो त कमांडो ऑपरेशन ते गौर कयो वेंदो। मीडिया रिपोर्ट मूजिबि ट्रंप नेतन्याहू खे इसराइल ते वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे। अमरीका ईरान में इम्कानी मुआहदे ते अॼु या सुभाणे सयूं थियण जो इम्कान आहे। नेतन्याहू ट्रंप खे ईरान ते हमला न कराइण जी ख़ातिरी बि कराई आहे।

ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची जा इसराइल से झड़पन बाद मुख्तलिफ मुल्क के हम मंसबत सा राबता अब्बास इराकची फील्ड मार्शल सदासम मुनीर साहब गाल बोल कई ईरानी परदेही वजीर सऊदी कतर फ्रांस के भी हम मंसबन के फोन किया इसराइल से पैदा थे मौजूदा सूरत हाल से गालू क्यों।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

हेलो कीजिए, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार और आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू 03000113488 के ऊपर आप लोगों के लाइव कॉल्स को रिसीव किया जाएगा सो डैट आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे और ज्वाइन करने के बाद मुझसे बात कर पाएंगे. हमारा बैकग्राउंड क्यों खत्म हो गया यार? हमारा बैकग्राउंड नहीं खत्म होना चाहिए था. सो साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स भी मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, सबको इंक्लूड करेंगे और बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस जो कि आप लोग मुझे करते जा रहे हैं तो सुनेंगे एक अदद बैकग्राउंड और इसी के साथ हम कमेंट्स को रीड करेंगे.

0: पता है पहली बार मैंने बहुत ही भूल गई थी, फिर मैंने एसएमएस किया था आपको आई लव यू सो मच।
1: अच्छा क्या भूल गई थी?
0: आई लव यू कहना भूल गई थी।
1: ओके ठीक है, आज कह दिया ना आपने, बस मुझे पता है अगर आप ना बोलेंगे तो मुझे पता होता है।
0: हाँ क्योंकि ये जब नहीं कहती ना
1: जी
0: तो मैं आपको ये नहीं कहती ना आई लव यू, तो मेरा दिमाग घूमने लगता था लड़की का।
1: अच्छा मुझे एक बात बताएं, जीजू को बुरा तो नहीं लगता हाँ मुझे आई लव यू कहती है?
0: नहीं वो जैसी होते हैं
1: जेलस होते हैं।
0: हाँ
1: वो तो फिर उनका होना बनता है ना।
0: नहीं वो कहती हूँ जलती रहो,
1: वो कहते होंगे मुझे तो कहती नहीं है, उसको बार बार कहती रहती
0: है।
1: हाँ जी
0: उसको कहती हूँ जलती रहो।
1: नहीं नहीं बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, उनका उनका भी
0: जानू।
1: हाँ जी
0: आपके लिए सब नहीं बोलते जालस नहीं होते,
1: बस वो तो उनका होना बनता है ना, उनका तो होना जालस बनता है तभी वो जालस होते हैं।
0: अरे मेरी जान तुम, आप मेरी जान है ना,
1: चले
0: जान से बोलती है ना किसी और को थोड़ी बोलती हूँ।
1: चले जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मोहब्बत। हाँ जी
0: क्या कहा आपने?
1: मैंने कहा बड़ी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी।
0: मेहरबानी की कोई बात ही नहीं।
1: चलें फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
0: बस आपका ये जो हंसना है ना ये बस दिल में छू जाता है, दिल को बस ये चुरा लेते हैं आप,
1: इसीलिए तो हंसती हूँ।
0: जल्दी तो मैं आपको हंसाती हूँ।
1: चले फिर इसी बात पे मैं अगला गाना प्ले कर रही हूँ, उसको सुनिएगा एंजॉय कीजिएगा मेरा साथ। हाँ जी
0: स्मार्ट किशोर भाई क्यों नहीं आते अब गाना गाने?
1: गाना गाना है आपने?
0: स्मार्ट किशोर भाई क्यों नहीं आते गाना गाने अब?
1: गाना गाने आते हैं ना, अभी तो गाना सुना के गए, उनका गाना प्ले भी किया है
0: उन्होंने, सुना था। अच्छा मैंने लेट कॉल किया ना,
1: बस आप गौर से नहीं सुनती ना मेरा शो, बस कट्टी
0: जानी मैं सुनती हूँ, वो जो ये गाने वाला सिस्टम होता है ना वो थोड़ा
1: ओ ओ कॉल ड्रॉप हो गई मिसेज अली की और ये अचानक क्या ही हो गया है, खैर कोई बात नहीं। 03000113488 हमारा लाइव कॉलिंग नंबर, गाना प्ले कर रही हूँ एक अदद, इसको सुनते हैं और आगे चलते हैं।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000002734, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 02424601000।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

एक्यूरेसी। अच्छा कहते हैं कि नंबर ऑफ बता रहा था, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ बताती है, नंबर ऑफ बताती है, कौन बताती है? अच्छा वो, ठीक है ठीक है। लगता है आज दानिया ने दाल पकाई है। हाँ जी, दानिया ने दाल पकाई है।

सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं एंड नया सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और ये वाला प्ले करते हैं जी. देखते हैं कि ये क्या सॉन्ग है. ये मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्ले करने जा रही हूँ. अगर तो ये पुराना वाला नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि ये पुराना वाला है सो इसको सुनते हैं इंजॉय करते हैं. नहीं पुराना वाला ही है एंड द सॉन्ग इज माही वे बाय फाखिर. सुनेंगे इंजॉय करेंगे आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पर्स अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: चल रही है।
1: आपकी लास्ट में लिखी कॉलर चेक करते हैं जी, कौन? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जी। सागर भाई कैसे? ठीक ठाक।
2: पहचान लिया,
1: पहचान लिया, बस मैं पहचान लेती हूँ, कभी कभार ऐसा कर लेती हूँ मैं। और चलें, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि मैं रोज पहचान रही हूँ। अच्छा, लास्ट लकी कॉलर हैं, आज की अच्छी बात क्या है?
2: नहीं, आज ये अच्छी बात कुछ है, हर किसी को पता तो है ये अच्छी बात क्या है, समझते सभी है, फिर क्या है उनको समझाना। अच्छी बात ये है कि गर्मी बहुत है, पानी बहुत पिलाया करो आवाम को,
1: पानी बहुत पिलाया करो।
2: हाँ, आप आवाम को बोल देना, आप तो नहीं पिलाएंगे आज से। ओ आर एस वगैरह, कैल्सी वगैरह, पानी प्यास से एक गिलास दिए तो दो गिलास पानी का पिए भाई, गर्मी बहुत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त। और कुछ कहेंगे?
2: टेंपरेचर क्या है मैम?
1: टेंपरेचर वाला सेगमेंट तो खत्म कर दिया हमने,
2: तो गाने का सेगमेंट भी खत्म कर दिया।
1: गाने का सेगमेंट भी खत्म कर दिया,
2: गई भैंस पानी में।
1: शाम को निकालेंगे इसको पानी से।
2: सात बजे?
1: हाँ जी, 7 बजे।
2: अच्छा, 7 बजे का मुझे पता नहीं था, यकीन करें कसम से मुझे पता नहीं था। दो दिन मैंने कॉल कर दी, एफएम चलाया तो चल रहा था आपका प्रोग्राम।
1: चले, जबरदस्त। हाँ जी, 4 बजे वाला तब्दील कर दिया ना, खत्म नहीं किया, तब्दील किया है 7 से 8 में।
2: अच्छा, चेंज किया है?
1: हाँ जी, बिल्कुल चेंज किया है। और कुछ कहेंगे?
2: और 11 बजे ये कॉल मिला रहा था, 11:30 बजे कॉल मिली नहीं, लगी नहीं, अभी ये लास्ट और लकी कॉल लगी, ये भी शुक्र है।
1: चले, बहुत अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखे अपना।
2: ओके ओके, आप भी अपना ख्याल रखे और आवाम को भी बोल दे।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। गाना प्ले कर रही हूँ जी, एक बहुत ज्यादा खूबसूरत सॉन्ग जो कि आजकल बड़ा फेमस है। और फाइनली इसी के साथ लेंगे आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मेरी आपसे चुटचैट होगी इस प्रोग्राम में कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे, इसके अलावा 7 से लेके 8 बजे तक होगी आज शाम को, तो सुनना मत भूलिएगा। 1 घंटा नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन 7 से 8 वाली, और कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह। सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दंदला सभी खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुलू दो के समान जय जादू की बारिश अल्लाह सबर खजानों के साथ हुआ है, पल से पल तक आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नहीं से जाकर जमीन से आसमां तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से दर्द से खुशी तक, दिल से लुत्फ और जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास नटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप लोगों के समातों के नजर किया जा रहा है, व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक हैं। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी खूबसूरती अब आपकी आपके हाथों में है, क्योंकि अब आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएंगे और वहां से मालूमात लेंगे कि क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। तो जल्दी जल्दी से जाएंगे और मालूमात करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा वाली ऐसी बात है जो कि जानना आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो बहुत से लोगों को थोड़ी सी इन चीजों की नॉलेज कम होती है। यानी कि देखा जाए तो आप खूबसूरत तो बना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं होती कि भाई खूबसूरत किस तरह से बना जाएगा और ये जो खूबसूरती आपको मिल रही है तो उसे मेंटेन कैसे रखा जाएगा। तो बहुत ज्यादा वाली बात है जो कि आप लोगों साथ शेयर करनी, लेकिन कहते ना कहते नहीं जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जी अपना तारीफ करवाते हैं, सो लिसनर्स फॉर रिसेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंतकीफा हालत है, कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हाँ ना, बिल्कुल जी। तो चलिए जी, यहाँ पर जितनी भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, जो भी अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समाल आने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाते और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब, और आगे से प्रोग्राम करते हैं हम एक बहुत ब्यूटीफुल सी नाद के साथ, बहुत प्यारी सी हम नाद सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि मजीद प्रोग्राम में क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो कि आप लोगों के लिए प्रोग्राम में होने वाला है। तो बिल्कुल जी प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल करते जा रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं, लगाते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी यहाँ पर नाद आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और तरीकेकार क्या होने वाली प्रोग्राम में शामिल होने के वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ जरा ये जो बात बताने वाली होती है कि भाई आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है तो उसकी जानिब आ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में अगर सवाल की बात की जाए तो मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है। जरा मैंने ये सोचा कि भाई बहुत से लोगों का ये एक ख्वाब होता है कि हम फेमस हो जाएं, हमारे बहुत ज्यादा वाले फॉलोअर्स हों और हम मतलब हम जहां भी जाएं तो हमें लोग जाने। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए सवाल सोचा है ना वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताइए कि आप फर्ज कर लें कि अगर आप एक दिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाए सिर्फ एक दिन के लिए तो आप उस एक दिन में क्या करने वाले हैं। बिल्कुल सही, आज के प्रोग्राम का सवाल आप लोगों से मैंने पूछा है कि अगर आप फर्ज कर लें एक दिन के लिए आप बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाते हैं तो आप उस एक दिन में क्या क्या करेंगे और मुझे बताएं जल्दी से। और इसी के साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जी। आप ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं

ओके जी, तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बता रहे हैं कि फर्स्ट करें अगर आप एक दिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस इंसान बन जाएं तो आप क्या करने वाले हैं. ठीक है जी, मुझे जल्दी से बताएं, मुझे जानना है. और साथ साथ पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते चाहिए. बिल्कुल जी, आप लोगों की मुझे लाइक्स और शेयरिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा वाली चाहिए. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ते जा रहे हैं प्रोग्राम में, बहुत ज्यादा वाला आपका शुक्रिया है. और साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना सिर्फ आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं बल्कि आपकी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो खूबसूरत भी बनाने वाले हैं. अगर आप खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती में चाहते हैं कि भाई जो है ना वो कभी भी ऐसा ना हो कि हम खूबसूरत हो जाएं, जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं तो वो खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है, तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं. इनका इस्तेमाल कीजिए, आपको खूबसूरती मिलेगी और वो खूबसूरती मिलेगी जो कि आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगी. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम और मजीद बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आप लोगों को हम बताते रहेंगे. लेकिन यहाँ पर आप जो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो बिल्कुल जी, आप लोगों के मैसेजेस हैं यहाँ पर और हमारे साथ एस एन मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम मुस्कान जानी, आप कैसी हैं? आप जाना अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां दे. और जाना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मैं जाना मेरे खास सलाम आपको और आपकी अम्मी जान को और आपकी दीवानी एस एन हमारे साथ. क्या बात है एस एन, आप इतने दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, कहाँ गायब हो गई थी. और बशीर लिगारी हमारे साथ हैं, गोट मीर खान लिगारी, वालेकुम अस्सलाम, अदाजु मोहब्बत हुआ है. और राशिद अवान हमारे साथ ही मेहरापुर के थे, सलाम सिस्टर सदरा मुस्कान. मैं क्रीम इस्तेमाल, अच्छा चलें ठीक है, हाँ कहते हैं मैं क्रीम तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ लेकिन आप जो इतना बताती हैं तो अब मेरा दिल कर रहा है कि व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करूंगा. बिल्कुल जी, ये जितने भी हमारे साथ लोग ऐसे ही ना जो कहते हैं ऐसा क्रीम ना ही होने दा, ऐसा क्रीम मतलब करें हई कोने का, तो उन्होंने सभी माण किया चवंदम तो व्हाइट एज जी का लवली क्रीम अथव ना यहाँ तवा सभी जलाए अथव. तो व्हाइट एज की लवली क्रीम हिकड़ी फेयरनेस क्रीम आहे, ऐं फेयरनेस क्रीम जी ज़रूरत मुझे ख्याल में हर कंहिंखे पवंदी आहे. सो तव्हां व्हाइट एज की लवली क्रीम लॻाए सघो था, जेकी माण्हू अगरि कोई बि प्रोडक्ट नाहे लॻाईंदा त व्हाइट एज लवली क्रीम तव्हां जे लाइ आहे. सो तव्हां लाज़मी लॻाए जो मूंखे ॿुधाइजो तव्हांखे रिज़ल्ट कीअं मिलनि पिया. और आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद आहिनि, वालेकुम अस्सलाम, ठीक कहते हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे कटे सटे. और कहते मुनाफ़त की हद है, अपनों की कामयाबी से हसद और गैरों की गुलामी पर फख्र, ये हमारे मुआशरे की वो तलख हकीकत है जो अंदर ही अंदर रिश्तों को खोखला कर देती हैं. बिल्कुल जी तमाम सही था चो. उन खां अलावा वासु भाई हमारे साथ कहते अदी सिडो असां भी अची वियासीं, हवा में उॾड़ी अदी सिडो सलाम. हवा में उॾड़ो पिया, तव्हां ॾे हवा हली थी वियसि ॿुधायो त सही, हिते त ॾाढी अॼु गर्मी आहे, सफ़ा घणी गर्मी. और हिदायतुल्ला क्या कहते यादि, अच्छा यानी कि आपको मेरी याद आ गई और मैं यहाँ पर टपक गई. वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आप कैसी हैं? आज ये सॉन्ग चलाओ असांजे करे लाड़कानो. अच्छा यो सच में ये गानो आहे, चलो मैं सर्च कयां थी, मूंखे मिलियो तो हलायूं था, ठीक है. और मलिक जफर रत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ हैं जी. मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट से, ओके जी कहते हैं. अच्छा आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, सो बहुत शुक्रिया भाई जान. और मुनस्सिब असीर हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया. किशोर बाकी थे सलाम अदा की आए हो, कैसा आए हो, खुश आए हो? बिल्कुल मू जड़ा स्मार्ट, बिल्कुल जी तमाम जड़ा स्मार्ट, शायद तमाम काम थोड़ा वध हो जाओ. अच्छा नजीर कोसो भाइयों में सुन रहे हैं बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया आपका. इमरानी आवाज हमारे साथ ही थे, आपका शो ग्रेट है और आपकी आवाज भी, बहुत शुक्रिया जी. और ये जी हमारे साथ मौजूद हैं उमर, उमर वालेकुम अस्सलाम, उमर आपका भी. और मोलाई मुजाहिद बोजार हैं ठूफ टूसल से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं. सिडो जी आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, जब से मैंने व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स लगाए तब से तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई हूँ. अच्छी से मुराद मना गोरी. सो आप भी लगाइएगा ताकि आप भी खूबसूरत और गोरे गोरे हो जाएं. और जाकिर हुसैन कोरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं. बिल्कुल जी सबके मैसेजेस, सबकी बातें और सबके जो टॉपिक के ऊपर आंसर होंगे वो मैं शामिल प्रोग्राम करती जाऊंगी. आप मुझे बताएं आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं. और प्रोग्राम अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आपके एरिया में मिल रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स? नहीं मिल रहे तो जल्दी से अवेलेबल कराइए. और इसी के साथ साथ आज मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि आप मुझे बताइए फर्स्ट करें अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं, बहुत ज्यादा वाले फेमस हो जाएं, तो आप क्या करेंगे उस एक दिन में, बताएं जल्दी जल्दी. और यहाँ पर टाइम चेक नहीं जी, टाइम हो चुका है कि हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिए, सुनते रहिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगा दे जाइए, खूबसूरत होते जाइए.

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569-0300-33-8-5-6-9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट

यानी कि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि भाई अगर मैं फेमस हो गया ना तो फिर मैं ये करूंगा, मैं फेमस हो गई ना तो फिर मैं ये करूंगी. आजकल आप जैसे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं ना, तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इनकी जगह होता या मैं इनके जैसे फेमस होता तो फिर मैंने ये करना था. तो बिल्कुल आज आप मुझे जरा बताइए, फर्ज के लिए अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे.

हाँ साईं वाह जो गानो हलायो थम और यहाँ पर हमारे साथ हैं जी जाकिर हुसैन कोरी कहते हैं सवालों जो जवाब ॾींदासीं गॾो गॾु तव्हांजी क्रीम खे मशहूर बि कंदासीं चले ये भी अजीब बात है और हिदायत अल्लाह कहते हैं टॉपिक आंसर सिद्रा आपने एक दिन के लिए फेमस बनाया है वो भी दोपहर तो हो गई है नहीं वो कल का दिन समझ लिया आप तो उसके अलावा जो है ना किशोर भाई क्या कहते हैं टॉपिक अदी एक दिन फेमस हुए तो खुशी मनाएंगे नाचेंगे गाएंगे सेल्फियां और वीडियोस बनाएंगे और दिन खत्म हो जाएगा पैसो हिकड़े ॾींहं लाइ मिले हां त बैंक में रखरायूं आ ज़मीनूं लिखरायूं आ ॿियो छा गोबर का बाद जो है ना हमारी पैसो बना जाती है अच्छा उनखां अलावा कहते अदी हिकड़े ॾींहं जो सीएम जो ठाही हां उन जो थोड़ो मतलब जेको आहे न उनखे साइड ते रखो जेको पुछो उहो ॿुधायो अच्छा उनखां अलावा एस खानी हमारे साथ हैं एस खानी वालेकुम अस्सलाम आरजे सिद्रा आपका शो वेरी नाइस है पहली बार कमेंट कर रहा हूँ और आप शो के नंबर तो बता दें बिल्कुल जी शो का नंबर है 03-15-799-0595 ये नंबर आप डायल कीजिएगा ठीक है और वीरू मल मेंगवार भाई हमें सुन रहे हैं मीपो खासी आपका बहुत शुक्रिया अनवर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदी वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो एक बेहतरीन प्रोग्राम साबित हुआ है उनजो क्रेडिट सॼे एफ एम जी टीम ऐं ख़ासि तौर ते अवां ॾे वञे पियो इनशाला ईअं ई ख़िदमतूं सर अंजाम ॾींदा रहंदा ऐं लिसनर्स जूं दिलियूं खटींदा रहंदा आमीन आमीन जी बिल्कुलु तव्हांजो मुहबतूं रहियूं त बिल्कुलु ईअं ई थींदो रहंदो और कहते टॉपिक हिकु ॾींहुं फेमस माना राति ख़्वाबु ॾिठो सुबुह जो उथियासीं त कारी वारा कक बिल्कुल ईअं चई सघिजे थो ओके सो अगरि तव्हां सां ईअं सीन थी वञे त पोइ तव्हां छा करण वारा आहियो बिल्कुलु मां इहो तव्हां खां पुछां थी ऐं तव्हां खां ॼाणींदासीं ठीकु आहे ऐं हिते जेको आहे त गानो त ॿुधोसीं हाणे तव्हां ज़रा ॿुधंदा बाबा त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो तव्हांजी ज़िंदगी में जेको आहे न एंट्री शो ज़रूरी आहे अक्सर ईअं थींदो आहे त असांजी ज़िंदगी में कुझु चीज़ुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे कुझु माण्हुनि जी ज़रूरत हूंदी आहे पर कुझु चीज़ुनि जी बि ज़रूरत हूंदी आहे अगरि ॾिठो वञे त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स उहे प्रोडक्ट्स साबित थिया आहिनि जेके तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाइनि था ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे हमेशह जे लाइ जेको आहे न हू प्रोटेक्ट बि कनि था लॉक बि करे छॾनि था ईअं न त सिर्फ़ु तव्हां प्रोडक्ट लॻायो था त तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले थी अगरि तव्हां छॾे ॾियो था त पोइ तव्हांजी ख़ूबसूरती बि तव्हां खां हली वञे थी बिल्कुलु ईअं कोन्हे को सो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जा प्रोडक्ट मौजूदु आहिनि अगरि तव्हां कोई बि प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु चाहियो था त वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे हर तरह जो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे जीअं पहिरियां अदी असांखे चयो त मां ब्यूटी क्रीम न लॻाईंदो आहियां पर वाइट एश जी लवली क्रीम लॻाईंदमि बिल्कुलु ईअं ई अगरि तव्हां ब्यूटी क्रीम नथा लॻायो वैसे त खोड़ माण्हू नाइट क्रीम इस्तेमालु कंदा आहिनि ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻाईंदा आहियो त तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदा अगरि तव्हां एक्नी यानी कि दाणनि खां परेशान आहियो त तव्हांजे लाइ वाइट एश जेको आहे न डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूदु आहे डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगरि तव्हां नालो वठी करे परचेज़ कयो था त तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो ऐं तव्हांजे दाणनि खे बिल्कुलु ख़तमु करे छॾींदो आहे सिर्फ़ु दाणा न बल्कि तव्हांजे चहिरे जा निशान आहिनि या फिर तव्हांजे चहिरे ते कोई धक जो निशान आहे कोई सड़न जो निशान आहे जेको तव्हां काफ़ी टाइम खां रिमूव करणु चाहियो था पर रिमूव न पियो त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे तव्हां वठी सघो था इस्तेमालु करे सघो था उन खां अलावा जेको आहे त वाइट एज जो साबुण तव्हां वटि मौजूदु आहे वाइट एज जो फेस वॉश तव्हां वटि मौजूदु आहे जेको वाइटमिन सी सां तयारु थियल आहे सो ही जेतिरा बि वाइट एज जा प्रोडक्ट आहिनि ही सभु जेके न हू नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती जे लाइ बिल्कुलु सफ़ा परफेक्ट आहिनि तव्हां मर्द आहियो मायूं आहियो तव्हां सभु लॻाए सघो था ऐं सभु खां मज़ेदार ॻाल्हि जेका मूंखे लॻे थी त वाइट एश वारा जेके प्रोडक्ट आहिनि ही सभु जेके न नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहिनि यानी कि अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का त तव्हां इहो चओ त बाबा केमिकल हूंदो या असां लॻाए सघूं था नथा लॻाए सघूं बिल्कुलु तव्हां लॻाए सघो था छो त वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न फ्रेश बणाईंदा फेयर बणाईंदा तव्हांजी स्किन तां जेके मसला आहिनि उहे सभु ख़तमु करे छॾींदा ऐं तव्हांजी स्किन सफ़ा ईअं चमकंदी वधंदी सो मर्द हज़रात आहियो मायूं आहियो ख़वातीन जेके बि ॿुधनि पियूं हाउस वाइफ आहियो या फिर जेके टीनेजर छोकिरियूं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि टीनेजर जेके छोकिरा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि त तव्हां एक्नी जी वजह सां अगरि परेशान आहे त डॉक्टर पिंपल जो एंटी एक्नी ट्यूब तव्हां लॻाए सघो था बाक़ी अगरि रही ॻाल्हि वाइट एश लवली क्रीम जी त ही त तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजो फेवरेट प्रोडक्ट आहे असां पाण बि इस्तेमालु कंदा आहियूं जेका शइ असांखे पाण खे वणंदी आहे त बाबा उहो मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे मां तव्हांखे बि ॿुधायां तव्हां सां बि शेयर कयां जीअं जेके लिसनर्स असांखे ॿुधनि था उन्हनि खे बि थोरो फ़ाइदो पहुचे मार्केट में जॾहिं तव्हां वेंदा आहियो त मार्केट भरियल पियो आहे बाबा प्रोडक्ट्स सां ऐं जॾहिं तव्हांखे उहे सभु प्रोडक्ट तव्हां ॾिसंदा त तव्हां थोरो कंफ्यूज़ थींदा त हाणे असांखे कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु घुरिजे कहिड़ो न वठणु घुरिजे त उन्हनि सभिनी सूरतनि में जेको आहे न मां तव्हांखे थोरो इहो ॿुधाईंदी आहियां त तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त तव्हां जेको प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया या जेको वठो पिया त उहो कहिड़ो आहे उनजो छा फ़ाइदो आहे ऐं हू तव्हांजी स्किन ते कीअं जेको आहे वर्क करण वारो आहे सो अगरि तव्हां वाइट एश लवली क्रीम वठो पिया त वाइट एश लवली क्रीम उन्हनि सभिनी माण्हुनि जे लाइ आहे जेके मेकअप यूज़ नथा करे सघनि जेके कोई डेली बेसिस ते कोई कमु कंदा आहिनि कोई तव्हां जॉब कयो था
तव्हां स्कूल गर्ल आहियो कोई बि हिन में न वाइटेस्ट लवली क्रीम में एज लिमिट बि कोन्हे का त तव्हां कहिड़ी उमिरि में लॻाए सघो था हिन में हर जेको आहे न हर कोई इस्तेमालु करे सघो था वाइटेस्ट लवली क्रीम तव्हां ॿार आहियो तव्हां जवान आहियो बूढ़ा आहियो मर्द मायूं सभी लॻाए सघनि था सो वाइट एज लवली क्रीम जेका आहे रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन्स जो फार्मूलो आहे जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड कया विया आहिनि जंहिंमें वाइटमिन B3 आहे वाइटमिन ई आहे वाइटमिन सी आहे वाइटमिन डी आहे ऐं उनखां अलावा सनस्क्रीन बि अथसि सो अगरि तव्हां चाहियो था त बाबा तव्हांजे लाइ सनस्क्रीन अगरि तव्हां मार्केट में अलॻि सां इस्तेमालु कंदा आहियो वठण वेंदा आहियो त सनस्क्रीन सही वारी तव्हांजे स्किन ते सूट करण वारी सनस्क्रीन मूंखे नथो लॻे त अॼु ॾींहं ताईं कंहिंखे शायदि मिली हूंदी जेतिरा जेको आहे न इहे जतन कबा आहिनि त असांखे सही तरह जो प्रोडक्ट मिले जेको तव्हांजे स्किन ते सूट बि करे त सनस्क्रीन जेको हिकु अहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको सफ़ा घणो कंफ्यूजिंग लॻंदो आहे मूंखे त अगरि तव्हां चाहियो था त इन कंफ्यूजन में तव्हां न पओ ऐं तव्हां वटि कोई अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु हुजे जेको तव्हांजी स्किन जेका न उहा प्रोडक्ट बि करे ऐं तव्हांजी ज़िंदगी बि आसान बणाए त तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जे तरफ़ अची सघो था ऐं वाइट एज लवली क्रीम जेका लाइट वेटेड फार्मूलो आहे ऐं तव्हांजी स्किन जे लाइ सफ़ा बहितरीन साबित थियण वारी आहे सो वाइट एज लवली क्रीम तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो उन सां गॾोगॾु जेको आहे न इस्तेमालु करण जा तरीक़ेकार बिल्कुलु ई आहिनि त वाइट एज लवली क्रीम खे तव्हां ॾींहं जो लॻाए सघो था राति जो कहिड़े बि टाइम लॻायो मुंहुं धोई करे लॻाइजो सही आहे ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे हीउ तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु कंदा सुम्हण खां पहिरियां ठीकु आहे पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो कोई बि प्रोडक्ट लॻायो था त ऐं हथनि खे बि चङे तरीक़े सां वॉश रखंदा कयो जीअं तव्हांजो जेको प्रोडक्ट आहे न उहो क्लीन तरीक़े सां तव्हांजे फेस ते लॻे ऐं जॾहिं वाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो था त उहा बि तव्हांखे राति जे टाइम लॻाइणी आहे ऐं बिल्कुलु तव्हां पंहिंजो फेस वॉश करे पोइ ई लॻाए सघो था सो वाइट एज ब्यूटी सो बि तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे वाइट एज जो फेस वॉश भी तव्हांजे लाइ न मौजूदु आहे अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हां फेस वॉश लॻाए सघो था तव्हां साबुण लॻाए सघो था जंहिंमें तव्हां ईज़ी फील कयो जेको तव्हांजे लाइ आसान हुजे तव्हां उहा शइ इस्तेमालु कयो छो त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे सो इहो ई फ़ाइदो आहे इहा ई हिनजी कामयाबी आहे उन खां अलावा तव्हां कोई बि प्रोडक्ट हिननि जो परचेज करे सघो था तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो मुनासिब क़ीमतुनि में मिली वेंदो तव्हांजी हर स्किन टोन जे लाइ आहे ऐं नथो मिले त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 हीउ नंबर जल्दी जल्दी डायल कयो जीअं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बि जल्दी जल्दी प्रोडक्ट अवेलेबल थी वञनि ऐं तव्हां बि जल्दी जल्दी इस्तेमालु कयो

जी मिठो ॻाल्हाए महफ़िल फुरी वई आहीं। तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया त अगरि तव्हां फ़र्ज़ कयो हिकिड़े ॾींहं जे लाइ तव्हां फेमस थी वञो था, सफ़ा घणा फेमस थी वञो था, हर कोई तव्हांखे सुञाणे थो, वाह वाह जाॾे वञो, बसि माण्हू तव्हां खां सेल्फी घुरे, अगरि अहिड़ा अथव हिकु ॾींहं जे लाइ, त पोइ तव्हां हिकु ॾींहं में छा छा कंदा? कहिड़ी कहिड़ी ख़्वाहिश आहे जेका तव्हां पूरी करणु चाहियो था सिर्फ़ु हिकु ॾींहं जे लाइ? उन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम ॿुधो आहिनि, अचूं था तव्हांजे मैसेजेस जी तरफ़, ऐं जेके फेसबुक ते माण्हू असांखे ॿुधनि पिया, बाबा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा कयो, सही आहे?

अच्छा अनवर भाई कहते हैं अदी कम से कम मेरे बेटे की बर्थडे तो विश कयो आ प्रोग्राम में केड़े प्रोग्राम में अज थस त बिल्कुल जी विश कना सी तवा जे पुट जी बर्थडे उन खा अलावा ताजो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पया और वासु भाई कहते अदी सिडो जवाब असा जो मुआशरो एड़ो आए सजो डी मानन सा सेल्फीयो कढराना में पूरो थी वेंदो हकीकत सिद्धार्थला कहते सिद्रा वो पूछना ये था कि अगर उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो उन पर वाइपर लगाया जा सकता है बिल्कुल जी तसल्ली से लगाइए कोई मसले की बात ही नहीं है और किशोर भाई कहते बिल्कुल अदी असा सोचो आए पर एक दिन के लिए ना पूरी जिंदगी ले चल यो सही है।

अच्छा, हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे सिद्रा में फेमस होने वाला था कि मेरे अकाउंट पर रिश्तेदारों की नजर पड़ गई. अब रिश्तेदारों की नजर का तो तुम्हें पता ही. जी जी, इसीलिए कहते हैं रिश्तेदारों से जरा छुपा के रखा करिए अपनी खुशियों को. और लुबी हमारे साथ मौजूद है. क्या बात है लुबी, गुड आफ्टरनून. सिडो जानी, मैं भी आपके साथ साथ हूँ. अर्जी भुट्टो से आपका शो सुन रही हूँ. अर्जी भुट्टो वारी लड़कियों को सलाम, जेके शो बुधन थियूं. अर्जी भुट्टो जी सभी सोणे छोकरन के सलाम आबाबा. आई तव्हां खे प्रोग्राम में वेलकम चऊं था. आई तव्हां ॿुधायो था अर्जी भुट्टो में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलनि था कोन. हिन सभिनी सोणे छोकरन खे चओ त बाबा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻाए. पोइ जी मिठो ॻाल्हाए महफ़िल फुरे वञनि. अच्छा मोलाई मुजाहिद दोस्त चूसल से क्या कहते हैं एक मिनट से. हाँ जी, टॉपिक अगर मैं फेमस हो गया तो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लूंगा. वो तो एक दिन के लिए फेमस होंगी ना आप, तो ये तो पता नहीं कब होगा. तो एक दिन की बात करें, एक ढीं जो गाल आयो एक ढीं जो. अच्छा फेरोज अली बिरोई हमारे साथ मौजूद है. हेलो. अच्छा आदल कहते हैं कि जवाब जेकॾहिं असां हिकु ॾींहुं में मशहूर थी वञूं त छा कंदासीं. पहिरियों अलाह जो शुक्र कंदासीं. इज़त ॾींदड़ फ़क़ति उहो ई आहे. बिल्कुलु जी. ऐं पंहिंजे वालदेन खे अच्छा वालदेन सां गॾु हुनखे सेलिब्रेट कंदा सही सही. ऐं टियों चौथा मशहूर थियण जो मतिलबु आहे आवाज़ मिलणु ग़रीबनि यतीमनि ऐं महबूब मजबूरनि जी. अच्छा मां चयो महबूब रिकाडा अची विया. मजबूरनि जी मदद कंदासीं, नाले खे कम में लाहींदासीं. ओके ओके. ऐं ज़मीन ते पेर रखी हलंदासीं, गुरूर न कंदासीं छो त मशहूरी ॿ ॾींहं जी आहे पर इज़त सदा जी आहे. बिल्कुलु, तव्हां भली इहा ॻाल्हि लास्ट में त जेका मशहूरियत आहे न उहा सिर्फ़ ॿिनि ॾींहंनि जी हूंदी आहे, पर उरूज खे ज़वाल आहे. सो बिल्कुलु तव्हां वाक़ई ज़मीन ते घुमण जा आदि थी वञो. आजज़ी जेका आहे न उहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे. मूंखे लॻंदो आहे आजज़ी बि कंहिं कंहिं इंसान जे अंदरि हूंदी आहे. सो अगरि तव्हां आजिज़ आहियो, अगरि तव्हांखे फ़क़ीर सां मिलो था त फ़क़ीर खे इहो महसूसु न करायो त तव्हां हुन खां मथे आहियो. ऐं अगरि तव्हांखे बादशाह सां मिलो था त हुनखे इहो महसूसु न करायो त हू तव्हां खां मथे आहे. कंहिं इंसान में बसि अगरि इहे ॿ ॻाल्हियूं अची वियूं न, हिन चीज़ुनि जी सम्झ अची वई न, त हू कामयाबु आहे. हुन खां अलावा अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो पिया त वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजे एरिया में मिलणु ॾाढो ज़रूरी आहिनि. अगरि नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो पिया 0315705. अच्छा छा था चओ, लॻे थो शेयरिंग वारा सभु नाराज़ आहिनि. लॻे ईअं थो वाकई शेयरिंग वारा माण्हू किथे आहियो बाबा, सिर्फ़ चार शेयर कया अथव. ॾिसो इहा ग़लति ॻाल्हि आहे. और मोलाई मुजाहिद बोज़ार कहते हैं सिद्रो जी लाहूती साजन चांडियो बि आपका शो सुन रहे हैं. लाहूती भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पिया.

अच्छा यासीन गुटाड़ो भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सकरंट से तवा असांके जॉइन कयो आए, कहते हैं अल्लाह जो शुक्र आ तां बुधायो की आयो आवाज अंदाज माशाल्लाह मौला सलामत रखे अवां के सदाई खिलंदा रहो इए ही। थैंक यू सो मच प्यारा भा, तां जो मोहब्बतूं आहिन और डेडिकेट। अच्छा तवा गानो लिखियो आए, ठीक है मां कोशिश कंदी तवा जो गानो हलाईंदा। इमरान अली बिरोही कहते हैं सिस्टर आरजे सिद्रा आप अच्छा क्या बात है, कहते हैं आप वो शख्सियत हैं जिसके शो में शामिल होना हम अपने लिए बड़ी नेमत समझते हैं। ना करें भाई, ये तो मेरी खुश नसीबी है कि आप जैसे लिसनर्स मेरे भाई प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम गुड है, सॉन्ग सुनाए मास्टर मंजूर का कुछ अल्फाज। चलें ठीक है, अल्फाज लिखे हैं तमाम, बिल्कुल तमाजी पसंद जो गानों हलाएंगे। साइम अमीर कहती है अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माय बेस्ट आज है सिद्रा, शो मस्त है, मेनू सोप बहुत पसंद है और लवली क्रीम भी, तो वो ले जाऊं आपके सिटी से? बिल्कुल जी, मेरे सिटी से आकर ले जाएं, रेशम गली से आपको मिलने वाली है, तो आप आए मेरे सिटी से लें या फिर आप सखर से लें या फिर शिकारपुर से लें, आपकी मर्जी है, बस लीजिएगा जरूर ताकि आप लोगों की खूबसूरती जरा महफूज रहे और आप लोग जान सके कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट का जलवाई अपना है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं, अपने एरिया में अवेलेबल कराते जा रहे हैं। टाइम वाटर

0: more evidence than ever presented.
1: Let's talk
0: your
1: about
0: elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. You're one-sided crooked networks. Right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
1: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what?
1: Mr. President,
0: a country can never be great with a dishonest press.
1: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for the interview.
2: अमरीकी सदर ट्रंप चूंडन में दादली वाले सवाल जो जवाब दियण बदरा सहाफी ते कावड़ी पे इंटरव्यू दौरान माइक जमीन ते उछले हलो पे मुख्तलिफ चैनल जा नाला खणी तनकीद ट्रंप मीडिया के कूड़ो करार ईंदे चयो चूंडन में दादली थी हुई सेनेट की प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी चेयरपर्सन क्रतुलेन मरी की सदारत हेठ इजलास सक्कर हैदराबाद मोटरवे के कम शुरू न थे मेंबर्स जो सख्त एतजाज सक्कर हैदराबाद मोटरवे वे मनसूबे कौमी इक्तसादी काउंसिल के इजलास में वजीर आजम आलो रखने की हिदायत कमेटी मेंबर्स जाम सैफुल्ला धारे जो सैफुल्ला अबड़ो बिन एतजाज कर सिंध से रोड्स के मामले से ज्यादती थी रही है बिन वजीर आजम के इफ्तताह बावजूद सक्कर हैदराबाद मोटरवे जिता शुरू नायक थी मार्च में कम शुरू करण जो वायदो किया वो पर टे महीना गुजरी वाया को कम शुरू ना किया वो मामलो वजीर आजम आलो रखो वे
3: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-57-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Apna Sheher Apna Ghar Mehrabpur aur Mehrabpur ki Awaaz GA FM 94.
4: On ka hai pehle. अच्छा मुझे अब बात समझ आई. चलें ठीक है ठीक है. इस बात के ऊपर जो है ना हम सारा गौर करेंगे ठीक है. और बहुत शुक्रिया साइमा मेरी जान आप हमारे साथ मौजूद हैं. और ये हमारे साथ एस एन कहती है मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं, बस एक बार आपसे मिलने का शौक बहुत है. और जाने हो सके तो फितूर ओएसटी लगाना, मुस्कान में गुम नहीं हो गई, बस आपके शामिल शो में शामिल नहीं हो पाती थी. ओके जी, लव यू टू, खुश रहे हमेशा. और फहद डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाब शाह कहते सलामती शो तो मजो नाइस आए मोहब्बत हूँ प्यारे भावन जो. और ये है सलामती गुलाम मुर्तजा बलोच मीरपुर खास से अदी जानी. अच्छा ये जाग जानी हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है. आपका नाम गुलाम मुर्तजा बलोच है, सही सही सही सही, यानी प्यार से आप खुद को जाग जानी बुलाते हैं. जाग जाए. ओके जी. और प्यारे अंकल आपको वेलकम करते हैं. और मौलाना इस्लाम अदर कहते अदी चले मैं फरमाइश आपकी पूरी करने की कोशिश करूंगी. बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं. और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सदरा बताए कि ये कौन से प्रोडक्ट है और क्यों इस्तेमाल किए जाएंगे, तो बिल्कुल मैं आपको बताने लगी हूँ. जब पहले हमने आप लोगों से वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, तो अभी आप लोगों को बताया जाएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना शायद आप जानते हैं समझते हैं किसी बात को. तो बिल्कुल अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये उन तमाम तर लोगों के लिए तैयार की गई है जो कि भाई क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि नहीं हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगा पाते हैं. तो ये जो नहीं वाला लफ्ज है ना ये नहीं नहीं मत करें और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है. अतः जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ सवा परफेक्ट साबित थींदी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटामिन ई बीड्स मौजूद आहिनि ऐं माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन सां तयार कई वई आहे. अव्हां खे रिज़ल्ट ॾींदी सिर्फ़ ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल सां. अगरि तव्हां मर्द आहियो, मायूं आहियो, जेकी बि आहियो असांखे ॿुधो पिया त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सिर्फ़ ॿ रातिनि जे इस्तेमाल सां जेको आहे रिज़ल्ट ॾियण वारो प्रोडक्ट आहे. ऐं बिल्कुलु जनाब डॉक्टर्स खां पुछा करे ई प्रोडक्ट तव्हां ताईं पहुचायो वञो आहे. डॉक्टर्स ई हिन में फुल जेको आहे न मतिलबु छा चवां त डॉक्टर्स हिनखे ॾिसी वायसी सुठे तरीक़े सां तयार करे पोइ तव्हां ताईं पहुचायो आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ऑल स्किन टाइप जे लाइ, तव्हांजी स्किन अगरि सेंसिटिव आहे त पोइ बि तव्हां लॻाए सघो था, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन खे सुहिणो बणाईंदी, ख़ूबसूरत बणाईंदी. ऐं तव्हां वाक़ई सोचींदा त असां वटि हाणे अहिड़ो प्रोडक्ट मौजूदु आहे जेको असांजी स्किन खे सुहिणो बणाईंदो आहे. उन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली न आहे, हुन सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे. ऐं डी स्किन फेस वॉश आहे जेको तव्हां इज़ीली इस्तेमालु करे सघो था. फेस वॉश त मुंहिंजे ख़्याल में वैसे ई तव्हांखे घणा पसंदि हूंदा आहे. सो डी स्किन फेस वॉश आहे जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयारु कयो वियो आहे. ऐं इन जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त अगरि तव्हांजी स्किन घणी बेजान लॻंदी आहे ऐं तव्हांजी स्किन जेका उहा मतिलबु जेको आहे न हाइड्रेट न आहे, त तव्हांजी स्किन हाइड्रेट थी वेंदी, तव्हांजी स्किन में जान अची वेंदी ऐं तव्हांजी स्किन जेका ग्लो करणु स्टार्ट थी वेंदी. सो डी स्किन जो फेस वॉश आहे जेको तव्हां इस्तेमालु करे सघो था. सुबुह शाम लॻायो, मंझंदि जो लॻायो, जंहिंमहिल दिलि चवे तंहिंमहिल लॻायो. उन खां अलावा राति जे टाइम ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा, ठीकु आहे. ही उहे प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हांजे लाइ हर जॻह अवेलेबल कराया आहिनि. ऐं अवेलेबल कराइण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां सभु जेके माण्हू असांखे ॿुधो पिया उन सभिनी माण्हुनि खे ख़बर हुजे त हीअ जेके प्रोडक्ट आहिनि हीअ केतिरा इंपॉर्टेंट आहिनि ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती खे केतिरो जेको आहे फ़ाइदो पहुचण वारो आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश तव्हांजे लाइ आहे. लॻायो, ख़ूबसूरत थियो ऐं डायल कयो 03-15-799-0595. अच्छा तव्हांजो कुझु मां कॉल्स बि वठंदमि ऐं अगरि तव्हां कॉल करणु चाहियो था प्रोग्राम में लाइव कॉल तव्हांजी मां बिल्कुलु शामिलु कंदमि अगरि कुझु थी सघियूं त. ऐं जेको आहे न तव्हां कॉल करे सघो था लाइव प्रोग्राम में. कॉलिंग नंबर आहे 03221322888. सो कॉलर्स जी तरफ़ अचूं था ऐं ॾिसूं था फस्ट कॉल जेका असांखे मिली आहे उहा कंहिंजी मिली आहे. सो बिल्कुल जी तव्हां अगरि कॉल थिए त इहो कॉल ते मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो त तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन ई प्रोडक्ट. त अगरि ॾिठो वञे त जॾहिं बि मां तव्हां खां पुछंदी आहियां त तव्हां कॉल ते सिर्फ़ु मूंखे इहा हिकिड़ी ॻाल्हि कंदा आहियो त भाजी असांजे ॻोठ में त कोन थो मिले, भाजी किथां वठी अचूं असां. त भाजी जा बाजा तव्हां ईअं कयो जेको तव्हांखे नंबर ॿुधाईंदी आहियां पूरे प्रोग्राम में उन नंबर ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे लाइ आसानी पैदा कयो. इन नंबर ते राबितो करण खां पोइ तव्हांजे एरिया में बि अवेलेबल थी वेंदा. सो ही फस्ट कॉल आहे, ॾिसूं था कहिड़े रस्ते सां मौजूदु आहे. हैलो, अस्सलाम वालेकुम. कहिड़े रस्ते सां मौजूदु आहे?
5: Thank you.
4: ओके भाषाला कुछ आयो आवाज कट जी तो दादा तमा जो हाँ नेटवर्क जो शायद काफी सारो मसलो आ नेटवर्क की वजह से ही शायद तुम्हारी कॉल सही प्रॉपर तरीके से कौन पहुंचन पो सो तुम कोशिश करो तो अगर तुम कॉल करो तो अड़ी जगह से वही बी कॉल कर जिसे तुम्हारा आवाज सही तरीके से असा पहुंचे ठीक है सो नेक्स्ट कॉल आई डिस्तों के गुड मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
5: वालेकुम अस्सलाम क्या
4: हाल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है रस्से से गुड मौजूद है
5: अब्दुल समी जूने जो अलीवान का
4: ओके अब्दुल समी जूने जो तुम ठीक आयो
5: अल्हम्दुलिल्लाह दुआयूं ब्या खैर ठीक ठाक हो
4: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बदो पे भासा जो
5: जी बताऊं दा बाबा
4: अच्छा नालो अच्छे तो प्रोग्राम जो
5: नालो वाइट इज
4: ओके जबरदस्त प्रोडक्ट इस्तेमाल करी इठाइन
5: कौन कया ने
4: चलो अन्ना दे कौन कयान को इरादो आए ता हां बाबा कंदा सी जरूर
5: हां इरादो आए कंदा से पर बुद्धना ते तोर ने के लोगो अची हूं पने चताल गुजरिया
4: आई ली पो मना प्रोडक्ट न था इस्तेमाल कयो इ छु
5: बस अदा ने को तोरो सहज आयो
4: चलो चलो वाइट इज लवली क्रीम तवा हणी दिसजो ई तवा जला तैयार कया सा स्पेशली
5: या इंशाल्लाह या असां इस्तेमाल कंदासीं ऐं हिकिड़ो पहिरों तव्हां हिकिड़ो इस्तेमाल कंदा हुयो उहो ऐं तव्हांजो किथे रखेसि इहे ॻाल्हियूं तव्हां विसारे छॾियो था अलाई
4: अच्छा मूंखे ॿुधायो तव्हां टॉपिक ते ॻाल्हाईंदा टॉपिक ॿुधो अथव अॼु प्रोग्राम जो
5: हा जी टॉपिक कहिड़ी आहे
4: टॉपिक आहे त अगरि तव्हां हिकिड़े ॾींहं जे लाइ मशहूर थी वञो त पोइ हुन ॾींहं में तव्हां छा कंदा
5: हुन ॾींहं में
4: चलो जबरदस्त केड़न दोस्तन की याद कना
5: अब्दुल गनी जूने जो साहब
4: जी जी
5: अदील अबड़ो साहब
4: जी जी ओके जी वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच प्यारा भाई तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुध पाया उन खां अलावा वरी चाह सां मोहब्बतन सां प्रोग्राम बुधंदा आयो नेक्स्ट कॉल असां वटि आए ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूद आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम अलहमदुल्ला ठीक है रस्से से गुड मौजूद आयो अच्छा वकाल लाड़काने खां मुखे बुधाए प्रोग्राम बुधो पिया असांजो प्रोग्राम बुधो पिया असांजो
5: प्रोग्राम तव्हांजो बुधो हूंदा प्रोग्राम
4: अच्छा इस्तेमाल कयो पिया प्रोडक्ट जेकी ॿुधायां पई चले जबरदस्त टॉपिक ते छा चवंदा जी जी जी जी बिल्कुल
5: आई
4: ली ये न कयो बाबा अलाह साईं ॾोह ॾींदव मज़ाक बि न कयो बाबा अहिड़ी अलाह साईं खां डिॼंदा कयो ज़बरदस्त ओके तव्हांखे मतिलबु ख़बर आहे त मुंहिंजो इहो फेवरेट गानो आहे चलो तव्हांजे लाइ लाज़मी हलाईंदासीं मूंखे लास्ट में कोई यादि रहिजो त इहो वारो सॉन्ग असांखे हलाइणो आहे सो बिल्कुलु तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया वाइट एज एंड टी स्किन ब्यूटी शो जेको तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे हीअ वारी कॉल वठूं था ॾिसूं त केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
6: وعلیکم السلام ابھی گلیور کا خالق لاشاری گلا
4: اوکے خالق بھا چھالا خوش آیو
6: الحمدللہ مجھے نتی دے تو بڑا کرا لنا
4: الحمدللہ مزے میں ہے پروگرام بدو پیارا بھا یہ
6: ابھی ہمارے پروگرام سے دل سے بدنا آیو
4: اللہ نالو چھے پروگرام جو
6: ابھی وائٹ ایس بیوٹی کرام ہے بیوٹی کریم ہے ڈی اسکن ہے سب کا کی یاد ہے
4: واہ واہ واہ واہ صدقو ونا میں استعمال کیو پیا یہ
6: تو بالکل جس طرح میں موجود ہے تھا وٹھے استعمال کروں گا
4: زبردست زبردست ٹاپک دی چھا چمدا
6: प्रमोशन
4: भी पाण ई कंदा।

अच्छा आदिल तव्हां जो गानो हलायम जो कोन ॿुधव छा अहिड़ो वीआईपी गानो हुयो अच्छा शिराज अली हमारे साथ साथ है शिराज आपको वेलकम करते हैं और सऊदी अरबिया से आप हमारे शो सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम एमए अंसारी हमारे साथ है एमए अंसारी फ्रॉम नवाबशाह कहते आई एम लिसनिंग योर शो अच्छा काफी टाइम से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और कहते हैं थैंक यू जी थैंक यू और कहते टॉपिक पर कहूंगा कि सुबह उठ के फेस वॉश करके बाहर निकलूंगा और हीरो की तरह स्टाइल मार के उन रिश्तेदारों को जलाऊंगा जो एक दिन के बाद सारी उम्र खून जलाएंगे चले ये भी सही बात है और ये गाना आप इंजॉय करें आपके नाम है सखावत अली राजपुर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम छा लादत खुश आयो

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना आप इंजॉय करें और साथ साथ किशोर भके थे अदी अज मुहे को गानो बुधो मुखे इया लगो ही गानो तमाजे शो में हर मानो के गालाण ते मजबूर कंदो गानो आहे चले मा ही गानो हलाण जी कोशिश या दे दिसू था ते न ते वाके केर केर गालाए तो गाए भी तो या न और वासु भाई तमा के प्रोग्राम आने पे बहुत शुक्रिया और तमा से पोस्ट के लाके शेयर कंदा हलो न सा गडो गर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया कोन मुखे यो भी बुधायो पया आई तमा जे एरिया में मिले थी कोने तामु के इहो भी बुधायो पया।

अच्छा आदिल, जो पहला लिंक था ना मेरे प्रोग्राम का, उसके बाद जो दूसरा लिंक आया ना, उसके स्टार्टिंग में गाना लगाया था आपका, सुनिएगा जरा, फेसबुक पर तो मौजूद होगा ना। पप्पा का मोकल वठी अचो जी, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करे सघो, ठीक आहे, ऐं तव्हां घुमो फिरो बाबा, ऐं मार्केट थोरो विज़िट कयो, उन्हनि खां पुछो दुकान वारनि खां त किथे किथे मिले थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जीअं तव्हां वठी सघो, जीअं तव्हां इस्तेमाल करे सघो, ऐं जीअं तव्हां सोणा थी सघो, सम्झो था। ऐं डायल कयो 03-15-799-0595। हाणे टाइम थियो आहे बाबा, वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उन खां पोइ वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾे अचूं था, तव्हां करे न वञो, हिते वेठा हुजो, मां उहो ई वञी उहो ई मोटां थी, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड by Whitish Beauty Products and D Skin Beauty Products.

0: GA FM 88
1: सिंध की आवाज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई आसिम हुसैन।

0: RI 0307-359210.
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-00-33-855-69
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-386-5453
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशहूरी

0: प्राय थई
1: ना दा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मजे दुकान जी बेड हलंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: रबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: ठीक ठाक होते हैं, लेकिन बाद में जो साइड इफेक्ट्स आपके चेहरे पर आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं. तो हमेशा आप इन चीजों से अवॉइड करें. आप लोगों को चाहिए कि आप इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि लाइट वेटेड हो और आप लोगों की खूबसूरती के लिए ऐसा हो कि जब आप इस्तेमाल करते रहें, आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो आप लोगों को जो खूबसूरती मिले वो हमेशा आपके साथ मौजूद हो. तो बिल्कुल आप लोगों के पास वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है. वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हो तो जनाब ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, नेचुरल अजा से तैयार शुदा है. तो वाइटिश ब्यूटी क्रीम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर एवोकाडो मिल्क और एलोवेरा मौजूद है. ये तीनों चीजें मिलकर जनाब वाइटिश ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया है. उसके बाद आपके पास वाइटिश का ब्यूटी सोप भी मौजूद है, वाइटिश का फेस वॉश भी मौजूद है एंड वाइटिश लवली क्रीम मौजूद है. वाइटिश लवली क्रीम तो मैं सोचती हूँ कि इसे तो हर एक इंसान को लगाना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है. तो वाइटिश लवली क्रीम जो कि भाई ऑल स्किन टाइप के लिए है, एज लिमिट भी कोई नहीं है कि आपकी उम्र अगर छोटी है तो नहीं लगा सकते, बिल्कुल ही लगा सकते, बच्चे बूढ़े जवान सभी लगाएंगे. और वाइटिश लवली क्रीम के अंदर जो है ना वाइटामिन से तैयार शुदा होने वाला ये प्रोडक्ट, इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है. तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा. और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी अवेलेबल है. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब से मुराद ये कि ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे, खास करके वो टीनेजर्स लड़कियां लड़के जिनके चेहरे पर दाने बहुत ज्यादा आते हैं. और मैंने कई मरतबा ये चीज नोटिस करी है कि अगर आप की उम्र बढ़ जाती है, अगर आपके चेहरे पर दाने एक मरतबा आ जाते हैं तो फिर उम्र जितनी भी बढ़ जाए आप लोगों को ये नहीं आप सबर मत किया करें ऐसे कि भाई हमारी उम्र बढ़ेगी तो ये दाने खत्म हो जाएंगे, निशानात खत्म हो जाएंगे. आप जो है ना वो वक्त के साथ साथ अपनी इन चीजों का इलाज ढूंढना शुरू करें. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के चेहरे पर एक्नी खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर रिंकल खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे के निशानात खत्म हो जाते हैं, आपके चेहरे पर चोट का निशान हो, जलने का निशान हो, ये तमाम निशानात रिमूव हो जाते हैं. तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा और रात के टाइम लगा सकते हैं, फेस वॉश लाजमी कीजिएगा. कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो फेस वॉश करना लाजमी होता है. तो लाजमी आप ये चीजों के ऊपर जब आप इन चीजों को और मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो यकीन जाने आप लोगों को बहुत अच्छी वाली जो है वो खूबसूरती मिलेगी. और साथ साथ आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके एरिया में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके.
1: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, कम ऑन, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे.
0: अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू वारो गानो हलायो गानो डेडिकेट कनासी ऐसा अनवर भाई जे पुट्र के ठीक है. अनवर भाई ही गानो तमान जे पुटड़े जे नाले आहे उन जी सालगिरह आहे. सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू. सही ही गानो असान जी तरफा असान जी पूरी टीम जी तरफा तमान के डेडिकेट आहे. वरी अला ईअं थींदो आहे न, मयारूं अहिड़ियूं ॾींदा आहियो मूंखे, मुंहिंजा लिसनर्स अहिड़ियूं मयारूं ॾींदा आहिनि, मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे हलुड़ी मां केॾो कुझु कंदी आहियां तव्हांजे लाइ पर पोइ बि तव्हां मतिलबु मूंखां ख़ुशि न आहियो थींदा पर चलो ठीकु आहे, मूंखे लॻंदो आहे कॾहिं मुंहिंजा लिसनर मूंखां ख़ुशि कोन थींदा. सो ख़ैरु आहे, बसि न थियो भले ख़ुशि, तव्हां बसि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी कजो. सही आहे. हुन खां अलावा अगरि तव्हां कॉल करणु चाहियो था त कॉलिंग नंबर आहे 0332132288, 0332132288, असांजी कॉलिंग नंबर आहे. मां कुझु कॉल्स वठंदमि हुन खां पोइ तव्हांजे कॉमेंट तरफ़ अचूं था, ठीकु आहे.

0: ओके जनाब, सो प्रोग्राम व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो आहे जनाब। मैं हिते कॉल वठू था, कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। कॉल, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: केड़ा सस सगड़ मौजूद आ?
1: शाम मसला जो तो सगड़ा।
0: ओके, किथा कॉल कया प्यारा भा?
1: जिलो खैरपुर।
0: ओके, खैरपुर मां कॉल कया, जिले खैरपुर मां। मखे बुधाय, प्रोग्राम बुधंदा आयो असाजो? इहो भी तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, कॾहिं कॾहिं बि ॿुधंदा कयो। मूंखे ॿुधायो, हिन प्रोग्राम जेको कयां थी, हुन नालो तव्हांखे ख़बर
1: आहे?
0: ओके, इरादो आहे, इस्तेमालु कंदा या इस्तेमालु कयो पिया? अच्छा, टॉपिक ॿुधो अथव? अच्छा, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा? ओके, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल के प्यारा भाउ।

0: वेरी कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं था केर असां सां मौजूद आहे. हेलो
1: अस्सलामु अलैकुम भाजी.
0: वालेकुम अस्सलाम. केर मौजूद आहे
1: भाजी? शिकापुर खां जमालदीन भयो.
0: ओके जमालदीन भाउ, छा हाल कुझु आहियो?
1: अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह सब खैर. असां ख़ुशि आहियूं भाजी.
0: जी जी जी जी प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: जी जी बिल्कुल भाजी ॿुधो पिया.
0: टॉपिक ते छा चवंदा? चलो साबुण लॻाए पिया. मोहबतूं आहिनि पहिरियनि भाउनि जो प्रोग्राम ॿुधो पिया. सो थैंक यू सो मच. ओके जी मैडम, आपदा जी की आवाज लगाई है लिस्ट में तो हम बताएंगे किसने फरमाइश करी. हाँ. लेकिन ये वाली भी हम कॉल ले लेते हैं.
2: तो मैं दीवाना बना अब मुझे होश की दुनिया.
0: ओके सो कॉलिंग नंबर 0332-1322-88. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: केर मौजूदा?
1: आफिर लखनऊ से बुलाया मोरो का.
0: ओके मोरो का कॉल किया. प्रोग्राम बुधो पे असो. आवाज कट जी तो
1: क्रीम.
0: हेलो
1: प्रोग्राम आई वाइट क्रीम.
0: जबरदस्त जबरदस्त. मुके बुधाए इस्तेमाल कयो पया मोरो में मिली थी?
1: जी जी मोरो में मां सुभाणे वठी ईंदो मां. मां जांच कराई आहे दोस्तन भी बुधायो आहे त मोरो में मिले थी.
0: चलो जबरदस्त जबरदस्त. केड़न दोस्तन की याद कंदा? टॉपिक ते छा चवंदा?
1: टॉपिक ते मां जे अगर एकरे दिए जे लाए फेमस थींदो त गरीबन जी ऐं माधूरन जी ऐं मिसकीनन जी यतीमन जी मदद कंदो.
0: हिक ॾींहं में करे सघंदा? चलो जिते पोता से. चलो केड़न दोस्तन की याद कंदा?
1: दोस्त है ना अमल दिलो शामिल दिलो मगर साहिल साहब.
0: जी जी आई
1: सही तीन का दिल का भाई मुझे इंतजार वा मुत बराबर हाय करना यार तू ही है.
0: चली मां कोशिश क्या दे. ठीक है
1: कोशिश है ना कछु लेकिन बुधवार से जरूर से जा था फोन कर.
0: टाइम थोड़ो बचवाना लास्ट में कुछ 8-10 मिनट बचा है. जी जी थैंक यू सो मच प्यारा भाव. प्रोग्राम में कॉल के लिए सुठो लगो तुम्हारा सा गाला है. माशाल्लाह जदी सोबर मानू प्रोग्राम में कॉल करना है दवा के लिए सुठो लगना उनन सा मानन सा गाला है. आई बी कॉल वठूं था दिसूं था नेक्स्ट कॉलर के रस से गड मौजूद है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.

0: ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ओके जी और हम ये वाली कॉल लेते हैं देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सगर मौजूद है
1: अलीजा
0: अलीजा कॉल गई आप अच्छा मीरपुर क्लास का कॉल मैं ठीक आप बताएं कैसी हैं अलीजा
1: मैं भी ठीक हूँ
0: ओके टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगी अलीजा
1: टॉपिक तो आज मैंने सुना नहीं है आप बता दें
0: टॉपिक ये है कि अगर आप एक दिन के लिए फेमस हो जाएं तो उस एक दिन में आप क्या करेंगी फेमस इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हैं आप देखकर सोचती है ना कि भाई मैं भी अगर फेमस होती तो ये करती
1: मैं सबकी मदद कर दी जो भी गरीब है उनकी
0: चलिए मुझे ये बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है
1: मैंने आपको बताया था ना कल कि मैं प्रोडक्ट कोई इस्तेमाल नहीं करती अभी तो पर यकीनन मैं करूंगी जरूर
0: चले मिल रहे मेरे प्रकाश में या फिर अभी तक यही शिकायत है कि अभी अवेलेबल नहीं हुए
1: नहीं है मैं गई नहीं ना अभी
0: चले आप मालूमात लीजिएगा फिर मुझे बताइएगा ठीक है
1: इंशाल्लाह दो तीन दिनों में जाऊँगी
0: ठीक है और कुछ कहेंगी
1: अभी तो टाइम नहीं है वरना फरमाइश करती जाऊंगी
0: चले ठीक है रहने देते हैं और दोस्तों को याद करें जरा ओके थैंक यू सो मच अलीजा मेरी प्यारी सी बड़ी आप प्रोग्राम में कॉल करती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके खुश रहें और ऐसे ही मुस्कुराती रहें और यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब कॉल जो हैं वो जरा सी साइड पर रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही थोड़ा सा है और आपके मैसेजेस भी मैंने पढ़ने आपके कमेंट्स भी पढ़ने तो जरा उनकी जाने भी आ जाते हैं और शोनी हमारे साथ कहती है यहाँ पे जाननी मैं भी आ गई आपके शो में एक बात बताऊँ आप ही मेरी मम्मा कहती हैं मुझे और भाई को कि पता नहीं आपके स्कूल और यूनिवर्सिटी कब ओपन होंगी पूरा दिन आपने घर जो है वो सर पर उठाया हुआ है तो आप इतनी शरारतें मत किया करें ना कि अम्मी जान को ऐसा बोलना पड़े और उसके अलावा हैं जी ये साइम अमीर कहती है वाह ग्रेट बस सरमा ये तमाम जो तारीफ़ों खपन बाकी थे बाकी सब फर्स्ट क्लास है अच्छा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन हमारे साथ है दिलावर हुसैन सोलंगी भाई बारी सिद्रा अगर मैं एक दिन के लिए फेमस हो गया ना तो सबसे पहले मैं बारी सिद्रा और इमरान खान से मिलता क्योंकि मैं दोनों का फैन हूँ और थैंक्स भाजी आबदा परवीन जी का गाना लगाइएगा डेडिकेट आसिफ सोलंगी मुदस्सिर और मुबशर सलीम एंड शहबाज के नाम ओके जी अच्छा किशोर भाई कहते हैं फेमस होकर गरीबों की कैसे मदद होगी मैं वही सोच रही थी क्या पता वो सोच रहे होंगे कि हम फेमस होंगे तो हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हम लोगों की मदद कर सकते हैं ये भी हो सकता है ओके जी मायरा भी हमारा शो सुन रही है थैंक यू सो मच मायरा

अच्छा दर्दे दिल कहती हैं कि जगा दो मुझे, हटो हटो। अस्सलाम वालेकुम चंदा, आप कैसी हैं? वैसे आज आप आने में जरा थोड़ा सा देर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाला सीन बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि मानो भले। थैंक यू। एम अंसारी कहते हैं कॉल नंबर बताओ। कॉल नंबर है 0332-1322-88। आप कल ट्राई कीजिएगा, ठीक है? दर्द दिल कहती है सॉरी आई एम लेट, थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ज्यादा। हिदायत उल्लाह कहते हैं वैसे मैं बहुत खुश हूँ आपसे। दर्द दिल भी कहती हैं हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। चले ये तो दो लोगों का हो गया ना, बाकी सारे लोग तो नहीं बोल रहे ना। और हाले सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। ओके ये क्या कहते हैं, अदी कल जे को ता किरायो वधायो ना, उनजे करे जो बस में रश घटा, तो फिकर न कर अल्लाह वडो ना। वैसे सच्ची बुधाया त जदी रश थोड़ी घट हुंदी आ ना, तो मुखे लगंदो आ सुकून आ जो लाइव शो प्रोग्राम में मां ई फील कनी आ, तो मतलब मां रिलैक्स थी करे प्रोग्राम के। बाकी जदी रश हुंदी आ ना, अल्लाह लास्ट में मां सफा त किजी पंदी आ। सो आई लास्ट टाइम जे को आ मां पाण के फ्रेश फील कयां थी। सो चवंदा न मतलब मुंहिंजी अम्मी जो मिसाल ॾींदी आहे, थोरा कणा थाली में भला, सो सम्झो था। गुलाब जहिड़ा हसीन माण्हू वफ़ा न कर त वञो। अब्दुल्ला महर भाई ये गाना आपको डेडिकेट किया जाता है। जहिड़ा हसीन माण्हू वफ़ा न कर त वञो। और जी साथ साथ आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे बताएं जरा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, आप इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर नहीं। और दर्द दिल कहती हैं कि मेरी फ्रेंड है हाले सुल्तान, उसको वेलकम करें। हाले सुल्तान आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। हजार खंड जतो ही भाई वालेकुम अस्सलाम। पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। हाँ एक दिन में वाकई कुछ नहीं होता। अशोक कुमार हमारे साथ मौजूद है, हेलो फ्रॉम दिल्ली। अच्छा मोहम्मद अली खोसू भाई हमारे साथ हैं, थैंक यू आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है।

अच्छा गानो ॾाढो भलो हलायो अथव, मां गाने सां गॾोगॾु तव्हां खां इजाज़त वठां, टाइम बि थी चुको आहे, सो मोकिल वठंदासीं इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात जेका आहे त मुंहिंजी सुभाणे थियण वारी आहे 1 बजे खां 3 बजे ताईं तव्हांजो असांजो साथ हूंदो आहे बाबा प्रोग्राम में, सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्याल रखंदा कयो, किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां थी, को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो हुजे जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे त हुनजे लाइ माज़रत, ऐं तव्हांखे चवंदी वेंदा त बाबा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजे या वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजे तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो ऐं पोइ मूंखे ॿुधाइजो त तव्हांखे कीअं लॻा, हुन सां गॾोगॾु मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अला हाफ़िज़ बाबा आई लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चौवीन कलाकन दौरान जो को कुछ थो है केर भी नो मनी सके इसराइल अमरीकी मर्जी का सिवाय का हरकत करे। तेहरान मुल्क की सलामती तोड़े दिफा ला तैयार है। अमरीकी सदर के रोकण बावजूद इसराइल जा ईरान में मुख्तलिफ शहर से हमला। जवाब में ईरानी फौज भी इसराइल के मिजाइलन की बरसात कर छी। इसराइली हमलन सबब तेहरान असफान तबरेज और बिन शहर के नुकसान पहुंतो। ईरानी फौज जा भी इसराइल के शहर तुल एब ते हमला। इमारतों मुतासर ईरानी हमलन बाद इसराइल जा तालीमी इदारा बंद। बिन गोरन अडे से भी एमरजेंसी लागू कई वही। इसराइली फौज चाहे तो ईरान के दिफाई ठाकन के निशानों पर है। इसराइल दवातम बेस के निशानों बयान बात क्या।

ईरान सां मुआदे जे वेझो आहियूं पिया। अमरीकी सदर ट्रंप चवाए त ईरानी हमलनि अमरीका जी गलनि वारी ख़्वाहिश खे तब्दील नाहे कयो। तेहरान खे चवां थो त मां मिज़ाइल फायर करे छॾिया, हाणे बस कयो, ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते वापसि अचो। ईरान सां मुआदो न थियो त कमांडर ऑपरेशन ते गौर कयो वेंदो। मीडिया रिपोर्ट मूजिब ट्रंप नेतन्याहू खे इसराइल जे वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे। अमरीका ऐं ईरान में अमकानी मुआदे ते अॼु या सुभाणे सीउ थियण जो इम्कान आहे। नेतन्याहू ट्रंप खे ईरान ते हमला न कराइण जी ख़ातिरी बि कई आहे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट मूजिब ट्रंप नेतन्याहू खे इसराइल जे वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे। अमरीका ऐं ईरान में अमकानी मुआदे ते अॼु या सुभाणे सीउ थियण जो इम्कान आहे। नेतन्याहू ट्रंप खे ईरान ते हमला न कराइण जी ख़ासिबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पैथल मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं।

0: ये अगर जिंदगी में कुछ रहना है तो अपने दम पे रहे, किसी का आसरा न किया जाए, जो है हमने किसी दूसरे से कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए जो मिलना है कुछ करना।
1: जबरदस्त, गुड हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आप शामली
0: प्रोग्राम नहीं, हमारा एक दोस्त है, उसको सलाम देना चाहिए अगर आप चाहें तो।
1: जी जी, कह दे अपने एक दोस्त को सलाम,
0: आरके रुखसार को सलाम।
1: चलिए ठीक हो गया, चलिए बहुत शुक्रिया, ढेरों सलामती तमाम सुंदर समातों पर जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहेंगे आप वाले से। अच्छा, ये सबक सीखा है आपने कि पैसा सब कुछ है, पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है जिंदगी। चले ठीक हो गया, आप भी दोस्तों को याद करेंगे। चलिए जनाब, सबकी जानिब से वालेकुम अस्सलाम, ढेरों सलामती आपके लिए भी। हर एक शख्स की लाइफ का एक्सपीरियंस चेंज है, किसी का भी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सेम नहीं होगा, तो आपने बताना है आपकी जिंदगी का सबक, आपने जिंदगी से क्या लेसन सीखा। ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था पर्सनली, तो मैंने सोचा चले जी मैं अपने लिसनर से अपने प्रोग्राम में पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
1: जनाब, वेलकम कहेंगी, कौन बात कर रहा है? खुश आमदीद कहते हैं आपको, आपने जिंदगी से क्या सबक सीखा? कोई एक बताएंगे? चलें अच्छी बात हो गई, दोस्तों को याद करेंगे आप भी? ठीक है आदा, मेहरबानी तमा जी, सब नहीं पा रहा, थैंक यू। और जनाब, लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी से क्या सबक सीखा है आपने, ये आपने मुझे बताना है, और मैं आपको वही बताने वाली हूँ जो डेली इस वक्त बताती हूँ, एज यूजल आपको बताने वाली हूँ। कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो जनाब इस छोटे से तशहीरी वक्फे के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क।
1: हाँ, दंदन जी बीमारी में मुब्तला मरी।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3 85-569 03-00-33-8-5-69

0: कुछ ऐसा लगे
1: हूँ कल आप कल क्या लिखा है बट कल आप आई नहीं, कल तो मैं नहीं आती, इतवार को तो छुट्टी होती है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैसेज किया है और ओके आरजू फ्रॉम मीर प्रकाश, चले कोशिश करेंगे ये सॉन्ग अगर मुझे मिला तो मैं प्ले कर दूंगी, ठीक है। ओके बहुत शुक्रिया आरजू, थैंक यू। और आपने ये सॉन्ग एंजॉय करना है आप तमाम लिसनर्स ने, क्योंकि इसी ट्रैक के बाद होगा न्यूज और कमर्शियल ब्रेक, इन तमाम ब्रेक्स के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बजट ते हुकूमत ए पीपल्स पार्टी विच में इख्तिलाफ कंदे पर्याप्त वजीर आजम शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास रिकर इजलास सुभाणे ते मुलतवी करे छॾियो। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारां बजट ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां वन आन वन मुलाकात करण जो फैसलो। सदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाकात कंदो। हुकूमती ऐं पीपल्स पार्टी जी टीम विच में मुलाकात थियण जो बि इम्कान। तरक़ियाती बजट ते हतमी मुशावरत कई वेंदी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास सुभाणे थींदो। ईरान ते इसराइली हमले जो जिम्मेवार अमरीका करार। तेहरान पारां वाशिंगटन सां ॻाल्हियुनि जो अमल मुतासिर करण जो बि ख़दशो ज़ाहिर। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बाग़ाई चयो आहे ईरान सऊदी अरब ते को बि हमिलो न आहे कयो। पाकिस्तानी सियासत ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो अमल जारी आहे। 24 कलाकनि दौरान जेको कुझु थियो आहे केर बि नथो मञी सघे त इसराइल अमरीकी मर्ज़ी खां सवाइ का हरकत करे। तेहरान मुल्क जी सलामती तोड़े दिफ़ा लाइ तयार आहे। अमरीकी सदर जे रोकण बावजूद इसराइल जा ईरान में मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला। जवाब में ईरानी फ़ौज बि इसराइल ते मिज़ाइल जी बरसात करे छॾी। इसराइली हमलनि सबब तेहरान असफान तुबरेज ॿिनि शहरनि खे नुक़सान पहुतो। ईरानी फ़ौज जा बि इसराइल जे शहर तुलएम ॿियनि ते हमला। इमारतूं मुतासिर। ईरानी हमलनि बाद इसराइल जा तालीमी इदारा बंदि। ॿिनि गोरियुनि अॾे ते बि एमरजेंसी लागू कई वई। इसराइली फ़ौज चयो आहे त ईरान जे दिफ़ाई ठाकनि खे निशानो बणायो आहे। पासदान इनकलाब चयो आहे त इसराइल जे नवातम पेस नोब ते हमला कया आहिनि। हमला ईरान में इसराइल पारां रेडार पेस खे निशान पास कया पिया। ईरान सां मुआदे जे वेझो आहियूं। नथो चाहियां त मुआदे खे ख़राब कयो वञे। नेतन्याहू वटि बि ईरान सां डील क़बूलण खां सवाइ को ॿियो गसु न आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरानी हमलनि अमरीका जे ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश खे तब्दील नाहे कयो। तेहरान चवां थो तव्हां मिज़ाइल फायर करे छॾिया, हाणे बस कयो। ॻाल्हियुनि जे बेस ते वापसि अचो। ईरान त मुआदो न थियो त कमांडो ऑपरेशन ते गौर कयो वेंदो। मीडिया रिपोर्ट मूजिबि ट्रम्प नेतन्याहू खे इसराइल ते वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे। अमरीका ऐं ईरान में इम्कानी मुआदे ते अॼु या सुभाणे सयूं थियण जो इम्कान आहे। नेतन्याहू ट्रम्प खे ईरान ते हमला न करण जी ख़ातिरी बि कराई आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास अराग़ची जा इसराइल ते झड़पनि बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे हमनसबनि सां राब्ता। अब्बास अराग़ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। ईरानी परडेही वज़ीर सऊदी अरब तुर्किया कतर ऐं फ़्रांस जे बि हमनसबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पैदा थियल मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। गिलगित बल्तिस्तान चूंडनि में पीपी मैदान मारे वरितो। ज़ालिमनि जो जशन।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8-5-69

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: 47।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: Cevap sunengi. Diye efendim.
1: ईरान जो इसराइल खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने जो ऐलान पासारन इंकलाब जो है त बेरूत ते हमलन जो भरपूर जवाब दिनो वो ईरानी परडेही वजारत इसराइली हमलन जो जिम्मेवार अमरीका के करार दई छो तर्जमान इस्माइल बकाई चयो है त ईरान सऊदी अरब ते को भी हमलो नाहे कयो पाकिस्तानी सालसरिये अमरीका सा गालियन जो अमल जारी है 24 कलाकन दौरान जो कुछ थियो है जिम्मेवार अमरीका है इसराइल अमरीकी मर्जी का सिवा का हरकत करे मुमकिन नाहे अमरीकी सदन से रोकण बावजूद इसराइल जा ईरान में मुख्तलिफ शहरों से हमला जवाब में ईरानी फौज भी इसराइल से मिसाइल की बरसात कर छी इसराइली हमलन सबब तेहरान इस्फहान तबरेज बेन शहरों के नुकसान पौतो ईरानी फौज जा भी इसराइल के शहर तल अबीब बेन ते हमला इमारतों मुतासर ईरानी हमलन बाद इसराइल जा तालीमी इदारा बंद बन गोरियन अड्डे ते भी इमरजेंसी लागू कई वही इसराइली फौज है ईरान के दिफाई ताकत के निशानों बनाया हुआ है पासारन इंकलाब है इसराइल जो नात बेस तल नोफ ते हमला कया है ना हमला ईरान में इसराइल पारा रेडार बेसिस के निशानों पर बात किया गया ईरान सा माहिदे जे वेझो आयो न थियो चाहे माहिदे के खराब कयो वञे नेतन्याहू वटि ईरान सा डील कबूलण खां सवाइ ॿियो को गस नाहे अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान हमला अमरीका जी ॻाल्हियुनि वारी ख़्वाहिश खे तब्दील न कयो तेहरान के चवां थो अवां इसराइल फायर करे छॾिया पर हाणे बस कयो गालियन जी मेज ते वापसि अचो ईरान सां वाइदो न थियो कमांडो ऑपरेशन ते गौर कयो वेंदो मीडिया रिपोर्ट मूजिब ट्रम्प नेतन्याहू खे इसराइल ते वधीक हमलनि खां रोके छॾियो आहे अमरीका ऐं ईरान में इम्कानी माहिदे ते अॼु थियण जो इम्कान आहे नेतन्याहू ट्रम्प खे ईरान ते हमला न करण जी ख़ातिरी बि कराई आहे

0: ईरानी वॾे वज़ीर अब्बास राखी जा इसराइल सां झड़पनि बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे हम मनसबनि सां राब्ता। अब्बास राखी फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। ईरानी वॾे वज़ीर सऊदी, तुर्किया, कतर ऐं फ्रांस जे बि हम मनसबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पैदा थियल मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। बलतिस्तान चूंडनि में पीपी मैदान मारे वरितो। जालनि जो जशन, 24 सीटनि मां 18 सीटनि जा नतीजा अची विया। गैर सरकारी ऐं गैर रस्मी नतीजनि मूजिबि पीपल्स पार्टी 9 सीटनि ते कामयाब, 3 सीटनि ते नवाज लीग, 1 ते वहदतुल मुस्लिमीन ऐं 6 सीटनि ते आज़ाद उमीदवार कामयाब थिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं कामयाबी ते जालनि खे मुबारकूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त जीबी में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां जीबी जी चूंडनि में कामयाबी ते पीपल्स पार्टी खे वाधायूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे कामयाबी ते वाधायूं ॾियां थो। नून लीग जी टीम बि इलेक्शन में भरपूर महिनत कई।
1: More evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: your
2: about
1: elections in this country. Before. We're like a third world country.
2: But, sir,
1: your elections are crooked, and you're crooked, and the press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. You're one-sided.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप। ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
5: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
8: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट पास अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Shaadi ka event aur stage aada taiyar. Kyun? Kyunki vendors ko chahiye fauri payment. Event planning ho ya koi aur business, payment ruk jaye to kaam bhi ruk jata hai. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-9196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त

माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट पर्स अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात बाद दीवान-ए-सदर पहुंची वो सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात गॾिजाणी में बिलावल भुट्टो ज़रदारी वॾो वज़ीर वाहिद अली शाह शरीफ रहमान ऐं नवीद कमर भी शरीक नए माली साल जी बजट ते ॻाल्हियूं वज़ीर-ए-आज़म पारां बजट ते पीपल्स पार्टी जा ख़दशा ख़त्म करण जी कोशिश ज़रियनि मूजिब हुकूमत नए साल जी बजट पेश करण वारी तारीख़ तब्दील करण ते बि ग़ौर करे रही आहे बजट 12 जून ते पेश करण ते मुशावरत करे रही आहे।

0: जंगी मां नई सिफातकारिता हथ खयो आहे। इतिहाद ऐं ॾहप सां ईरान कामयाबी माणींदो। ईरानी सदर मसूद पशिकियान जो बयान। वॾे तर्जुमान इस्माइल बकई चयो आहे त पाकिस्तानी सालिस ज़रिए अमरीका सां ॻाल्हियुनि जो अमल जारी आहे। 24 कलाकनि दौरान जेको कुझु थियो आहे ज़िमेवार अमरीका आहे। अमरीकी सदर जे रोकण बावजूद इसराइल जा ईरान में मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला। जवाब में ईरानी फ़ौज बि इसराइल ते मिसाइल्स जी बरसाति करे छॾी। इसराइली हमलनि सबबि तेहरान, इस्फ़हान, तबरेज़ ऐं ॿियनि शहरनि खे नुक़सान पहुतो। ईरानी फ़ौज जा बि इसराइल जे शहर तल अबीब ऐं ॿियनि ते हमला। इमारतूं मुतासिर। ईरानी हमलनि बाद इसराइल जा तालीमी इदारा बंदि। बन गोरियन अॾे ते बि एमरजेंसी लागू कई वई। इसराइली फ़ौज चयो आहे त ईरान जी दिफ़ाई ताक़त खे निशानो बणायो आहे। पासा इनकलाब चयो आहे त इसराइल जी नवातियम बेस ऐं तल नोफ ते हमला कया आहिनि। हमला ईरान में इसराइल पारां रेडार बेसिस खे निशानो बणाइण बाद कया विया। ईरानी परदेह वज़ीर अब्बास अराग़ची जा इसराइल सां झड़पनि बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे हमनसबनि सां राब्ता। अब्बास अराग़ची फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई। ईरानी परदेह वज़ीर सऊदी, तुर्किया, कतर ऐं फ्रांस जे बि हम मनसबनि खे फोन कयो। इसराइल सां पैदा थियल मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। गिलगित बल्तिस्तान चूंडनि में पीपी मैदान मारे वरितो। जयालनि जो जशन। 24 सीटनि मां 18 सीटनि जा नतीजा अची विया। गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिब पीपल्स पार्टी 9 सीटनि ते कामयाब। 4 सीटनि ते नवाज़ लीग, 1 ते वहदतुल मुस्लिमीन ऐं 6 सीटनि ते आज़ाद उमीदवार कामयाब थिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं कामयाबी ते जयालनि खे मुबारकूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त जीबी में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां जीबी जी चूंडनि में कामयाबी ते पीपल्स पार्टी खे वाधायूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त सदर आसिफ ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे कामयाबी खे वाधायूं ॾियां थो। नून लीग जी टीम बि इलेक्शन में भरपूर महिनत कई।
1: Than ever presented.
2: Let's talk about
1: your elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled all the way to Wisconsin. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what?
2: Mr. President,
1: a country can never be great with a dishonest press.
2: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for the interview.
0: अमरीकी सदर ट्रंप चूंडनि में धांधली वारे सवाल जो जवाब ॾियण बदिरां सहाफ़ी ते कावड़जी पियो। इंटरव्यू दौरान ज़मीन ते उछले हली वियो। मुख़्तलिफ़ चैनल जा नाला खणी तनक़ीद। ट्रंप मीडिया खे कूड़ो करार ॾींदे चयो त चूंडनि में धांधली थी हुई। सेनेट जी प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी जी चेयरपर्सन कुरतुलेन मरी जी सदारत हेठि इजलास। सखर हैदराबाद मोटर वे ते कम शुरू न थियण ते मेंबर्स जो सख़्त एतिराज़। सखर हैदराबाद मोटर वारे मनसूबे ते क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में वज़ीर आज़म आॾो रखण जी हिदायत। कमेटी मेंबर्स जाम सैफुला धारे जो, सैफुला आबड़ो ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त सिंध सां रोड्स जे मामले ते ज़्यादती थी रही आहे। ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे सतह बावजूद सखर हैदराबाद मोटर वे ते शुरू रोड नाहे थियो। मार्च में कम शुरू करण जो वाइदो कयो वियो, पर 3 महीना गुज़री विया आहिनि, कम शुरू नाहे कयो वियो। मामलो वज़ीर आज़म आॾो रखियो वञे। आज़ाद कश्मीर जे ॿियनि ज़िलनि जीअं कुहाला में बि अवाम एहतजाजी सट खे रद्द करे छॾियो। आज़ाद कश्मीर जे ॿियनि ज़िलनि जीअं कुहाला में बि ज़िंदगी मामूल जीअं जारी। आज़ाद कश्मीर में कुहाला पुल ते ट्रैफ़िक जी रवानी मामूल मूजिब जारी। कुहाला पुल ट्रैफ़िक लाइ मुकमल बहाल। कुहाला में सभई नंढियूं वॾियूं बाज़ारूं ऐं वापारी मर्कज़ बि खुलियलु।

0: मदेजी के घोट दड़ो में घरों अणपढ़ था औरत कतल मसमात सायरा कंदर के घुट्टा रही कतल करण जो इंकशाफ लाश अस्पताल मुंतकिल औरत के वारिसन मूजिब न्याणी के संदस मुड़स तौला कंदर तशद कंदो हो औरत के मुड़स घुट्टा जहर दई मारो है जवाबदार गिरफ्तार कर वे नवाबशाह के बिजी बंडी भरसा वाटर कोर्स मां नामालूम शख्स जो लाश हथ इतलात पुलिस लाश अस्पताल मुंतकिल कर सुणप न थी पुलिस मूजिब लाश के दरवेश जो लगी रो है गंबट ए भरपासे में पकड़ियल एचआईवी ते जाब्तो न आयो एचआईवी जा वधिक चार शकीबार गिम्स दाखिल नीगर मोहम्मद यूसुफ 12 महीनन जी नूर फातिमा 6 महीनन जी हुरैन ए 10 महीनन जो आर्यान में एचआईवी जो खदशो इंतजामिया मूजिब बारन जो पीसीआर रिपोर्टू मोकिलियूं आइन रिजल्ट इन वक्त ताई नाहे आयो रिजल्ट अचण ताई तस्दीक नथा करे सकूं एचआईवी जा शकी मरीज सामूं अचण सको
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर KTN News.
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसा।

नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी भी होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलादीप का अलादीप करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी, एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी।

0: हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: थे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अच ब्लड प्रेशर खंग टीबी मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-96-851
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब और सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेक्निकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03002723 4, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे, सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी कंप्यूटर इस जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी,

0: ਤੌਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-1623-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खा इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए
2: 3 दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब
3: मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 0242-460100।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट, इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोचन में जी मेरा पर FM 94 ही हले, दुकान मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब कराण ते दिल्ली नथी।
0: दुकान जी बे डरंदी?
1: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

देर जो करण थी सघे थी। तकरार जे हल लाइ भाइरनि ऐं भाई भाइरनि सां ॻाल्हियूं हथनी मर में आहिनि। छिकताण खां पासो कयो वञे। ईरानी पड़ेही वज़ीर अब्बास राख़्ची जा इसराइल सां झड़पनि बाद मुख़्तलिफ़ मुल्कनि

0: सबंसा राबता अब्बास राक्षी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साबी गाल बोल कई ईरानी परदेही वजीर सऊदी तुर्किया कतर ए फ्रांस से भी हम मनसबन के फोन कयो इसराइल सा पैदा थे मौजूदा सूरत हाल ते गाल कयो
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307359210
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 3855 69

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिग

0: 3 0 3 3 85 500 3 00 3 8 5 6 9
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 18 00 003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301 380 83 47
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल मिले अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब भरोसे
0: को असल राज स्किन हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

वफ़ाक़ी बजट जे पेश थियण में वधीक ॿ ॾींहं लॻण जो इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो अॼु रिथियल इजलास मुल्तवी करे छॾियो। सुभाणे इजलास थियण जा इम्कान। तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। 10 तारीख़ ते इक़्तिसादी सर्वे जारी थियण जो इम्कान। 11 या 12 जून ते बजट पेश करते हुआ।

0: इसराइली ईरान जा एक बेते हमला इसराइली शहरन में वरे नुकसान जा इतला इसराइली हमलन के जवाब में ईरानी फौज इसराइल ते मिसाइल सी बरसात कई इसराइली हमलन सबब तेहरान इस्फहान तबरेज ए बेन शहरन के नुकसान पहुंतो ईरानी फौज जा भी इसराइल के शहर तल अवीव ए बेन ते हमला इमारतू मुतासिर ईरानी हमलन बाद इसराइल जा तालीमी इदारा बंद बिन गोरीन अड्डे ते भी एमरजेंसी लागू कई वही इसराइली फौज चाहे तो ईरान की दिफाई ताकत के निशानो बढ़ाया है पासदारन इंकलाब चाहे तो इसराइल के नवातम बेस ए तल नोफ ते हमला किया गया है हमला ईरान में इसराइल पारा रेडार बेसिस के निशानो बयान बात किया गया
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GAFM 94